तुम सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, मैं आ तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओ कर दे अज के कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत के कन्ने। तुम सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

है तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हाँ बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत।

0: गोरिया आकर, गोरिया गोरिया आकर, आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा घुट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

2.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

102.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

इशारे ये अदाएं, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय।

0: अरे कर दे शराबी जिसे चाहे जिसे चाहे।
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लागू होगा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल। वैज्ञानिक मैपिंग के जरिए चिन्हित किए जाएंगे रिचार्ज जोन। प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं के नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। 25 साल से सेवाएं दे रही हैं हजारों अध्यापिकाएं। हिमाचल की 44 इंजीनियरिंग छात्र जापान में सीखेंगे अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली दी शुभकामनाएं। सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाखों पूर्व सैनिक लाभान्वित। बाल विवाह के खिलाफ 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का समर्थन किया। गाँव में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर। सरकार ने दूध खरीद के दाम बढ़ाने की दिशा में उठाए कदम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे चश्मों, बावड़ियों और नौणों को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों की संरक्षण के लिए स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत जल स्रोतों की वैज्ञानिक मैपिंग की जाएगी और उनकी रिचार्ज जोन की पहचान कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। समाचार के अनुसार मॉनसून के दौरान बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाओं से जल स्रोतों को नुकसान पहुँचता है। वहीं पाइपलाइन टूटने और जल स्रोतों में गाद भरने से भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पंचायतों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षित युवा और कर्मचारी जल स्रोतों की प्रवाह तथा उनकी स्थिति की निगरानी करेंगे। जल स्रोतों की डिस्चार्ज में लगातार कमी आने पर समय रहते संरक्षण के उपाय शुरू किए जा सकेंगे। योजना के तहत जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा कचरा और गंदा पानी पहुँचने से रोकने तथा संरक्षण कार्यों की निगरानी स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था भी होगी। सरकार का उद्देश्य केवल जल स्रोतों का संरक्षण करना नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बनाए रखना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत 1493 सिलाई अध्यापिकाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट हुई है। वर्तमान में 1481 अध्यापिकाएं 508 रुपए प्रतिदिन की पारिश्रमिक पर दैनिक आधार पर कार्यरत हैं, जबकि 12 अनुबंध अध्यापिकाओं का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 10,500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 वर्ष सेवा पर नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यद्यपि पंचायत सचिव भर्ती में इनके लिए निर्धारित आरक्षण का प्रावधान खुला है। प्रदेश की 44 मेधावी इंजीनियरिंग विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत जापान में अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स की बारीकियां सीखने रवाना हो रही हैं। इस दल में 24 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं, जिनका चयन 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 650 आवेदकों में से मेरिट के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
1: पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को गति दी है। युद्ध विधवाओं की बेटियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है और प्रदेश में 1252 वीरता पुरस्कार दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय संवर्धन हेतु ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए और भैंस के दूध का 71 रुपए प्रति लीटर तय किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल विवाह रोकथाम संबंधी वैश्विक प्रस्ताव को भारत का पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ है। बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और बालिका शिक्षा की संरक्षण के लिए इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
2: तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। एक बार फिर मुख्य समाचार। हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लागू होगा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल। 25 साल से सेवाएं दे रही सिलाई अध्यापिकाओं के नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग विद्यार्थी जापान में सीखेंगे अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स। सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण का प्रावधान। गाँव में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। बाल विवाह के खिलाफ 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। गुंजन रेडियो 91.2 FM सुनने के लिए धन्यवाद।

0: अभी क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते जब तक डस्टबिन ना मिले,
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
5: मेरा

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए। उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: वो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा।
8: Hey!
6: ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, पहुँच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, गीत भी आपको सुनवाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह मन करता है कि अपने दोस्तों के साथ बात कर लेनी चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए, उन्हें मैसेज भेजने चाहिए। और हाँ श्रोतो, अच्छा लगता है मुझे जब उन लोगों का सुबह का अभिवादन करना जो मेरे समक्ष ना होते हुए भी मेरे हृदय के बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। श्रोताओं, ये कब होता है? ये तब होता है जब सुबह सुबह हमें अपने दोस्तों के मैसेज आते हैं और मैसेज से हमें लगता है अरे हम तो इन्हें याद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त एक मैसेज के जरिए हमें याद करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इसी तरह से हमें अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ मिलकर रहना चाहिए, उन्हें विश करनी चाहिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारा भी कोई है जो हमें याद करता है। बिल्कुल श्रोताओं, हम भी आपको याद करते हैं, तभी तो चले आते हैं हर दिन आपसे मिलने और ढेर सारी बातें आपके साथ साझा करने। बातें और जानकारियाँ और भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और नाइट फिल्म का पहला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सुविचार की। श्रोताओ, कहते हैं हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही हमें उसके नुकसान का पता चलता है। बिल्कुल सही बात है श्रोताओ, जब गुस्सा आता है तो गुस्से में हम ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, और लेने के बाद हमें उस पर पछतावा बहुत सारा होता है। तभी कहा जाता है कि जब भी गुस्सा आए थोड़ा सोच कर फैसले लेने चाहिए, वो गुस्से में लिए गए फैसले भी सही नहीं होते हैं, और गुस्से पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। और दूसरी बात ये है श्रोताओं कि हम सभी ने देखा है कि जब भी कोई आंधी आती है उसका नुकसान जो होता है, उस नुकसान के बाद ही हमें पछतावा होता है कि अरे इतना नुकसान हो गया, हमारा ये बर्बाद हो गया, जान चलेगी लोगों की। और ये दोनों ही क्रोध और आंधी एक समान है, दोनों के जाने के बाद बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो ज़िंदगी में हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें पछतावा हो। बोलने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो श्रोता, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में आगे भी बढ़ते हैं। श्रोताओ, बात करें आज के मौसम की यानी वेदर की, तो आज का वेदर है 18 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 77%। तो अभी तक तो मौसम में पूरी तरह से बदलाव नहीं आया है श्रोताओ, और बारिशें भी हो रही हैं, अभी चलने वाली हैं बारिशें भी। तो थोड़ा सा जाते मौसम में भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाता हुआ मौसम भी थोड़ा सा परेशानियां और दिक्कतें हमारे लिए खड़ी करता है। ऐसे में सर्दी जुकाम खांसी होने की संभावना बनी रहती है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। और साथ ही साथ जब बरसात का मौसम जाने वाला होता है, तो एक खुशनुमा मौसम के आने की शुरुआत भी होती है। और जैसे ही मौसम जाने वाला होता है, तो हम जुट जाते हैं साफ़ सफाइयों की तैयारियों में। घरों के आसपास बहुत सारे अनावश्यक पौधे जो है लग जाते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, ताकि धूप भी लगे और खुला खुला सा माहौल लगे। और कई बार क्या होता है, बहाव की वजह से नालियों में मिट्टी भर जाती है, उन्हें भी हम खाली करते हैं, ताकि पानी का बहाव जो है वो फिर से सही हो जाए। गमलों की गुड़ाई करते हैं, अपने आसपास की साफ़ सफाई करते हैं। बहुत सारे घरों पर आप सभी ने देखा होगा, काई भी लग जाती है, दीवारों पर लग जाती है, फर्श पर लग जाती है, फिसलन हो जाती है, और उस फिसलन में क्या होता है, कई बार गिरने की संभावना भी बनी रहती है। हमारे छोटे बच्चे घरों पर होते हैं, वो तो आपको पता है धीरे चलते नहीं हैं, भागते दौड़ते हैं, तो थोड़ा सा हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उन्हें भी हम साफ़ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हें हम अपना कर काई को हटा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि साफ सफाई घरों पर बनी रहती है। और स्वच्छता श्रोताओं बेहद ज़रूरी होती है, इसी स्वच्छता के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में समय हो गया है सुबह के 9:20। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के दौरान आज प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। सांसद राजीव भारद्वाज ने सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर दिया बल। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, जायका के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए जापान सरकार से किया जाएगा आग्रह। मंडी जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पात्र लाभार्थियों के लिए बन रही मददगार। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार हुई धीमी, विभाग में 11 सितंबर तक फिर से मॉनसून के सक्रिय होने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री इस दौरान आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बीच वे आज केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर प्रदेश के पर्यावरण व वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों को उठा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सहायता जारी करने और विभिन्न परियोजनाओं के बजट को जारी करने का भी आग्रह कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी सहित कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का कल 9 सितंबर को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा जिला में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा जन जागरूकता को प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया है। धर्मशाला में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजीव भारद्वाज ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभागों के साथ साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने परिवहन विभाग, HRTC तथा निजी बस ऑपरेटरों से अपने चालकों और परिचालकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया।
2: पिछली बार की अपेक्षा इस बार दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है। उस बैठक में आगे किस तरह से दुर्घटना के स्तर पे कैसे सुधार हो उसके विषय में चर्चा की गई है। आने वाले समय में उन पे दोबारा चर्चा की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में दुर्घटनाओं में और अधिक कमी आएगी। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैंने यही प्रार्थना की है कि अधिक से अधिक अवेयरनेस कैंप्स लगाएं और उन अवेयरनेस कैंप्स में जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, इन सब को उन पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स में सहभागी बनाएं।
1: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित ना रहे। जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। युवा खेल सेवाएं एवं आयुष मंत्री यादविंद गोमा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जाइका के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए जापान सरकार से आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाइका प्रोजेक्ट के निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की वर्तमान अवधि इसी वर्ष समाप्त होने जा रही है और सरकार ने इसके लिए एक्सटेंशन मांगा है। जाइका की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कार्यशाला में प्रदेश भर से जाइका प्रोजेक्ट से जुड़े किसानों, बागवानों और स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया।
3: जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जाइका जो है वो काम कर रहा है, जहाँ जहाँ एड दे रहा है, उसमें हिमाचल जो है वो नंबर 1 की पोजिशन पे है और हिमाचल में विभाग जो है पूर्ण रूप से प्रयासरत है। लेकिन जाइका के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश में जो है वो काम हो रहा है और जो राइट टू लाइवलीहुड है, जो लोगों का अधिक से अधिक फ़ायदा जो है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको फ़ायदा देना जो है सरकार का ध्येय है। ये प्रोजेक्ट जो है 2026 में समापन की ओर है। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी डिज़ास्टर हुआ है प्रदेश में और हमने जाइका वालों से भी गुजारिश की है कि हमें जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन पीरियड दिया जाए।
1: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह ने कल लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंदर गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह को उनकी नई जिम्मेदारी और न्याय के क्षेत्र में सफल कार्यकाल के शुभकामनाएं दी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
5: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी जिले के करसोग उपमंडल में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बन रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
6: करसोग में 23 पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। ये राशि 4 किस्तों में दी जाती है और सभी लाभार्थियों को अब तक 2 किस्तें जारी हो चुकी हैं। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि शिक्षा और रोजमर्रा के खर्च की चिंता दूर होने के बाद अब अपने घर का सपना भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सहायता से उन्हें आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ जीवन आगे बढ़ाने का भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत सरकार अनाथ और बेसहारा बच्चों की शिक्षा से लेकर कौशल विकास और आवास तक सहायता उपलब्ध करवा रही है। करसोग में योजना का असर अब इन लाभार्थियों के जीवन में सुरक्षा और आत्मविश्वास के रूप में दिखाई दे रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत ऊना जिला में एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन आगामी 16 सितंबर को किया जाएगा। उपायुक्त जतिन लाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे और प्रतिभागियों के साथ स्वयं भी वॉकथॉन में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वॉकथॉन का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में नशे के विरुद्ध सामूहिक चेतना को मजबूत करना है। उपायुक्त ने युवाओं, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों तथा आमजन से इस जन जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल शिमला में बताया कि राज्य में यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 13 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास का मॉडल दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई है और प्रदेश में आगामी कुछ दिनों तक मौसम के बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। विभाग ने 11 सितंबर से फिर से मॉनसून के रफ्तार पकने की संभावना जताई है। इस बीच बीते दिनों हुई भारी बारिश से प्रदेश के कुछ हिस्सों में सड़क यातायात अभी भी प्रभावित है। भूस्खलन से राज्य में 59 सड़कें अवरुद्ध हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, चिकित्सा अधिकारियों को एनपीए देने पर विचार कर ही पड़े सरकार। जबकि दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, कैंसर संस्थानों को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ करेंगे खर्च। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के दौरान आज प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। सांसद राजीव भारद्वाज ने सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर दिया बल। आयुष मंत्री यादविंद गोमा ने कहा, जाइका के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए जापान सरकार से किया जाएगा आग्रह। मंडी जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पात्र लाभार्थियों के लिए बन रही मददगार। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार भी धीमी। विभाग ने 11 सितंबर से फिर से मॉनसून के सक्रिय होने की जताई संभावना। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समाचारों से पहले हमारी बात हो रही थी बदलते मौसम के बारे में। जी हाँ श्रोता, बरसात का मौसम के विदाई का समय लगभग करीब आ चुका है और इसकी विदाई सितंबर के आखिरी और अक्टूबर की शुरुआती हफ्ते में होती है और मानसून की वापसी को हम मानसून विड्रॉल कहा जाता है। और जो है थोड़ा सा हमें राहत मिल जाती है कि अब बारिश जो है ख़त्म होने वाली हैं और साफ सफाइयों के दिन शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी मानसून की विदाई की बहुत सारी बातें जो होती हैं सामने आती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर 17 सितंबर के आसपास जो है उत्तरी पश्चिमी भारत से विदा होना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर पर तक लगभग पूरे देश से हट भी जाता है। थोड़ा सा अदल बदल हो जाता है, कई बार सितंबर में बरसात खत्म हो जाती है, कई बार अक्टूबर तक भी चलती हैं। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में श्रोता होता है, लेकिन अगर मौसम के अनुमान की बात की जाए तो 17 सितंबर के बाद जो है थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो जाता है। और मौसम में बदलाव बारिश के जाने के बाद आसमां साफ होने लगता है, तेज़ धूप होने लगती है और तेज़ धूप के साथ साथ श्रोताओं हवाओं में ठंडी नमी बन जाती है और थोड़ी हल्की फुल्की सी ठंड लगती है, जैसे सुबह और शाम ठंड महसूस होने लगती है। और तापमान की बात करें तो मानसून के जाने के बाद दिन में हल्की गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत में रातें ठंडी होने लगती है जिससे सर्दियों की आहट शुरू हो जाती है। जी हाँ, मौसम में बदलाव हो जाता है, बरसात की विदाई हो जाती है और सर्दियों का आगमन हो जाता है। सर्दियों के आगमन पर हमें निकालने पड़ते हैं अपने स्वेटर और बरसात की वजह से जो हल्की फुल्की जो स्मेल है कपड़ों से आती है, हर घर में ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही बरसात खत्म होती है हम अपने बिस्तर को रज़ाई, कंबल या गर्म कपड़े पहनने वाले स्वेटर, जैकेट, गर्म सूट जो भी होते हैं उन्हें धूप लगवाना शुरू कर देते हैं कि सर्दियां करीब आ गई हैं, उन्हें पहनना होता है। और स्मेल किसी को भी अच्छी नहीं लगती है तो हर कोई चाहता है कि थोड़ी सी धूप उनमें लग जाए, नमी ख़त्म हो जाए और वो कपड़े पहनने लायक हो जाए। जी हाँ श्रोताओं, थोड़े से काम आप सभी के बढ़ने वाले हैं तो तैयार हो जाएँ अपने काम काज के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको घर के घरेलू काम काज बहुत सारे करने हैं। बदलता मौसम हमें थोड़ा सा परेशान तो करता है थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन कामकाज बढ़ना स्वाभाविक बात है। तो थोड़ा सा इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ श्रोताओ, दिल ही तो है कि दिल की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दिल है तो हर कुछ करने का मन करता है, दिल नहीं है तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है। दिल है तो बात करने को मन करता है, दिल नहीं है तो बात करने को मन नहीं करता है। लेकिन फिलहाल श्रोताओ, हमारा मन हमेशा होता है अपने श्रोताओं के साथ बातचीत करने का। तो थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन के इतिहास की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज है 8 सितंबर। 8 सितंबर का दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम के लिए जाना जाता है। आज के दिन को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा साल 1966 में मान्यता दी गई थी। इसका उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ाना और निरक्षरता को ख़त्म करना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और बात करें आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो आशा भोंसले को कौन नहीं जानता है, कौन इनके गीत नहीं सुनता है। इनके गीत जब बजते हैं तो एक सुकून सा मन को मिलता है और हर कोई, बच्चा, जवान, बुजुर्ग, हर कोई उनके गीत सुनना चाहता है। भारतीय संगीत जगत की दिग्गज और प्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले का जन्म आज के दिन यानी 8 सितंबर 1933 को हुआ था। भूपेन हजारिका 1926 में भारत के महान कलाकार, संगीतकार और प्रसिद्ध भूपेन हजारिका का जन्म भी आज ही के दिन यानी 8 सितंबर 1926 को हुआ था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ हम अभी और भी आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला और बने रहिए हमारे साथ यानी अपने दोस्तों के साथ।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ अखबारों की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। श्रोताओं, सर्दियों की सब्जियों की तैयारियां शुरू हो गई है और किसानों ने अपने खेत संभाल लिए हैं। सितंबर का पहला सप्ताह किसानों के लिए खेती में नई फसल की तैयारियों का समय लेकर आया है और मॉनसून की बारिश के बाद अब जिला कांगड़ा के किसान सर्दियों की अगेती सब्जियों की बिजाई और पनीरी की रोपाई में जुटने लगे हैं। मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य ऊंचाई वाले इलाकों तक इस समय खेतों में सही फसल का चयन कर किसान आगामी महीनों में बेहतर आमदनी की नींव रख रखे हैं और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सितंबर के समय पर बोई गई अगेती सब्जियां बाजार में सामान्य फसलों से पहले पहुंच जाती हैं, जिससे अच्छे दाम मिलने की संभावना भी होती है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के इतिहास की बातचीत गीत से पहले हम कर रहे थे, थोड़ी सी बातचीत और हम आपके साथ साझा करेंगे। 2000 की बात की जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा था। 2003 में इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोड 8 सितंबर को ही सामने आए थे और साथ ही साथ 2003 में भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। 2006 में भारत के नासिक जिले में 8 सितंबर 2006 को मालेगांव बम धमाके हुए थे और इसके साथ साथ 2008 की ओर रुख करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सितंबर 2008 में कैनफिला म्यूचुअल फंड घोटाला मामले के मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारिख व अन्य आरोपियों को जमानत भी दी थी। 2008 में प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रिका फोर्ब्स ने 8 सितंबर 2008 में भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की थी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की जानकारियाँ। जानकारियों के साथ थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिलजुल कर इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ, श्रोताओ हर कोई चाहता है कि अच्छा दोस्त उसकी ज़िंदगी में आए और अच्छी सलाह से दे, अच्छा साथी बने। और वैसे भी कहा जाता है कि अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम सलाह भी लेते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी वो करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने घर पर हम नहीं कर पाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ करते हैं। और ज़िंदगी के सफ़र में एक अच्छा और प्यारा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन श्रोताओं, हमें तो बहुत सारे दोस्त आपके जैसे मिले हैं जिनसे हम हर दिन अपने दिल की बातें भी करते हैं और ढेर सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। तभी तो चले आते हैं हर दिन आपसे मिलने और ढेर सारी बातें करने। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और बहुत देर से हमारे श्रोताओं को इंतज़ार होगा कि आज कौन सा दिन है। जी हाँ श्रोता, आपको बता देते हैं, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी साक्षरता दिवस। साक्षरता का अर्थ तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि पढ़ना लिखना होता है। पढ़ना लिखना सिखाना एक तरफ से नहीं होता है, बल्कि जो इंसान इतना समक्ष बन गया है, माफ़ कीजिएगा, इतना सक्षम बन गया है कि अपने दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग कर सके। और साथ ही साथ साक्षरता इसलिए भी ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ पाए, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर जिसे मिल पाए, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उसे आसानी हो जाए, स्वास्थ्य, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का सही उपयोग कर सके, बच्चों की शिक्षा में माता पिता बेहतर योगदान भी कर पाते हैं साक्षर होकर, समाज में जागरूकता और आत्मनिर्भरता बेहद ज़रूरी है। जी हाँ श्रोताओ, ये सभी चीज़ें तब होती हैं जब हम पढ़े लिखे होते हैं, जब हम साक्षर होते हैं। साक्षर व्यक्ति जो है हर काम को भली भांति कर पाता है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य सरकार प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण को लेकर प्राथमिकता दे रही है तथा स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पद सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीपे हुआ

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में हम साक्षरता की बात कर रहे थे। श्रोताओं, साक्षरता और शिक्षा पर विश्व और भारत के महान विचारकों ने भी कई सारे प्रेरणादायक बातें कही हैं, जो समाज में अक्षरों और ज्ञान के महत्व को भी बताती हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें जगाते हैं। कलाम साहब का मानना ये है कि साक्षरता और शिक्षा ही युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति देती है। तो बहुत सारे जो महान व्यक्ति हैं, उन्होंने साक्षरता के बारे में बहुत सारे विचार कहे हैं। और थोड़ी सी बात अगर हम स्वामी विवेकानंद की करें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक आधार और आत्मविश्वास की ऊंचाई है। उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपे पूर्णत्व को प्रकट करना है। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी की हम बात करें तो उन्होंने कहा है, निरक्षरता किसी भी देश के लिए एक अभिशाप और कलंक है। अक्षरों का ज्ञान केवल एक साधन है और साक्षरता का असली उद्देश्य मनुष्य का मानसिक और नैतिक विकास करना है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और साक्षरता की बातें जब चल रही हैं तो एक के बाद एक बात दिमाग में आ रही है। श्रोताओं, साक्षरता और शिक्षा जो है विश्व और भारत में बहुत इन पे जोर दिया जा रहा है। और शिक्षित व्यक्ति हर काम को भली भांति कर सकता है। शिक्षा के बिना बात करें तो व्यक्ति का जीवन ही कुछ नहीं है। और शिक्षा से हर चीज़ का ज्ञान होता है, पढ़ने लिखने का, हिसाब किताब करने का, और एक जो है हम हर बात पर अपने जो सलाह है, विचार दूसरों तक साझा कर सकते हैं। ये हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हम वो ज्ञान दूसरों को भी बांट सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम दूसरों को भी बांट सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी वो ज्ञान देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चलती रहती हैं और ज्ञान हम कहीं से भी मिलता हो उसे एकत्रित कर सकते हैं, इससे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ फिर से आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के बाद और कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहे थे। शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और साक्षरता शिक्षा की पहली सीढ़ी है। साक्षर व्यक्ति न केवल पढ़ना लिखना सीखता है बल्कि अपने अधिकार, कर्तव्य और समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को भी बेहतर ढंग से समझ पाता है। इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक करना और दुनिया में निरक्षरता को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ श्रोताओं, अगर साक्षरता के महत्व की बात की जाए तो साक्षरता केवल अक्षरों और शब्दों को पढ़ने लिखने की क्षमता का नाम नहीं है, ये व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। एक साक्षर व्यक्ति बैंक में कागजात पढ़ सकता है और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है और यानी अपने अधिकारों को समझ सकता है और अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग भी कर सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं श्रोताओं साक्षर व्यक्ति की, और साक्षरता से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। आज के डिजिटल युग की बात की जाए तो आज के डिजिटल युग में साक्षरता भी बहुत ज़रूरी हो गई है। मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग करने के लिए पढ़ना समझना आवश्यक है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। थोड़ा सा फिर से आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, आज के गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम साक्षरता की बात कर रहे थे कि साक्षर होना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और साक्षरता की बात हो रही है तो महिलाओं की साक्षरता की अगर हम बात करें तो समाज, किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। शिक्षित माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को लेकर बेहतर निर्माण ले सकती है। इसलिए बेटियों को बेटों के समान शिक्षा और अवसर देना समाज की जिम्मेदारी बनता है। साक्षरता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाना और जागरूक करना होती है। और साथ ही साथ साक्षरता की बात हो रही है तो शिक्षित और जागरूक नागरिक अंधविश्वास, भेदभाव, बाल विवाह, नशाखोरी और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। साक्षरता लोकतंत्र को भी मजबूत करती है क्योंकि जागरूक नागरिक अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को समझकर सही निर्णय ले सकता है। तो श्रोताओं, ये तो है बातचीत साक्षरता की। बातचीत के साथ साथ कार्यक्रम में हम हर बार आपका करवाते रहते हैं मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के संग। तो बिल्कुल देरी न करते हुए कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नज़र करते हैं।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो के सेट पर इस समय चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्रोताओं, हमें पता होता है कि हमारे श्रोताओं को इंतज़ार रहता है कार्यक्रम का, क्योंकि हर दिन की जानकारी आप तक पहुंचती है और साथ ही साथ आप सुनते हैं प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ हम गीत लेकर आते हैं कि हमारे श्रोताओं को बेहद पसंद आए और जानकारियाँ भी। तो जानकारियों में हम साक्षरता की बात कर रहे हैं श्रोताओं, तो साक्षरता बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें योगदान देना चाहिए। हम अपने आसपास कई लोगों की मदद कर सकते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। बच्चों को नियमित रूप से हमें स्कूल भेजना है, बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, बुजुर्ग तथा वंचित लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना भी साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस श्रोताओं हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और ज्ञान हर व्यक्ति का अधिकार है। साक्षरता व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शक्ति देती है। हमें संकल्प भी लेना है कि हम अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित ना रहने दें। श्रोताओं, एक साक्षर व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाता है। इसलिए साक्षरता केवल पढ़ने लिखने का माध्यम नहीं है, बल्कि बेहतर और उज्जवल समाज की नींव है। इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ आप सबको फिर से लिए चलते हैं गीतों की दुनिया में। तो आइए फिर से इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शोध इसी मस्ती और धमाल के साथ कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं। और मस्ती और धमाल तब होती है जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा और बेहतर चल रहा हो, जिंदगी खुशनुमा हो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की देर होती है। जो मिल गया है वो किस्मत होती है, जो नहीं मिला है वो अनुभव होता है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मौका है। खुश रहना एक फैसला है और मुस्कुराना उसकी आदत है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही एक दिन इतिहास लिखता है। हार मत मानो क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। जी हाँ श्रोता, बिल्कुल हमें ज़िंदगी से हारना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो तरक्की के बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं और उन्हीं रास्तों में हमारे पसंदीदा रास्ते होते हैं जिस पर हम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत एक दिन रंग लाती है और फिर आती है बारी खुशनुमा ज़िंदगी जीने की, खुशहाल ज़िंदगी जीने की। और उस समय जिंदगी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मीठी सी लगती है। और जिंदगी जब खुशनुमा हो ना श्रोताओ, तो जिंदगी का सफर भी कम लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा ना दोस्तों, इसी तरह से होता है ना जिंदगी में। तो ऐसे कीजिए कि अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पसीना तो आपको बहाना ही पड़ेगा। जब हम मेहनत करते हैं ना तो मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो श्रोताओ, इसी मिठास को और बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

तो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करें कि नई शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। साक्षरता दिवस पर हमें एक प्रण लेना है कि उस यज्ञ में आहुति देने का जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इसकी ज्वाला उतनी तीव्रता से धधक नहीं पा रही है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम से शुरुआत करनी होगी। आहुति छोटी छोटी ही होती है, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमें छोटी छोटी कोशिशों से कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होना होता है। तो अगर आप भी घर पर किसी गरीब बच्चे को ना पढ़ा पाएँ तो क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर कोई छोटा सा समूह बनाकर स्कूल जाने की व्यवस्था ज़रूर कर सकते हैं। छोटे छोटे पैसे को जोड़कर हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं बात और जानकारियों के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर लगभग हम आ ही पहुँचे हैं। तो अब चलते चलते थोड़ा सा आपको और सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और एंजॉय करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक को।

श्रोतो, इसी प्यारे से गीत के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार फिर से मिलेंगे नई बातों, नई जानकारियों और नए गीत संगीत के साथ। प्यारे दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।

0: चूही? क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
5: मेरा गेम ओवर।
3: चले,
6: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
7: रुको, सोचो और एक्शन लो।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूप।
1: तो फिर ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत।

गणपति के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहे सही से।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: क्या है?
1: क्या है ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करें प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
0: मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: तो जो ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति

सरस्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई कड़ी के साथ। आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका आप सभी के साथ जुड़ चुकी है। दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मेरे हौसलों की उड़ान। तो आपके हौसलों की उड़ान कहाँ तक हम पहुँचा पाए हैं और आप उसमें कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने हौसलों को उड़ान की ओर लेकर जाने के लिए, ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी, तो स्पैम स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे हौसलों की उड़ान में।
1: थैंक यू रुचिका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि हम और इस बात के लिए भी कि हमें मौका मिलता है हम आप तक अच्छी जानकारियां पहुंचा पाते हैं और उन जानकारियों से कहीं ना कहीं सभी का जो भला छिपा होता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने हौसलों को इसी तरह से उड़ान दे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में पड़कर अपने हौसलों को न खो दे। और रुचिका, इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और हम हर बार जो एक नई उम्दा जानकारी लेके आते हैं वो बहुत ही मुझे लगता है हमारे दोस्तों को भी अच्छी लगती होगी और कभी कभी हम उनसे सुझाव भी मांगते हैं। और इस बार मैं पहले ही अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आपको इस आज के विषय के संदर्भ में हमें कोई सुझाव देना है
0: आज तो से या पहले भी कोई भी ऐसा विषय रहा हो जो उनको कंफ्यूजन में हो तो उससे भी जुड़ सकते हैं वो।
1: बिल्कुल, उसके बारे में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर कुछ हमसे छूट जाता है तो कृपया आप हमें भी बता सकते हैं। और रुचिका, वैसे तो सीजन देखो त्योहारों का चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है और आजकल मैंने अभी अभी बाहर आई तो देखा बहुत सारे आपके टेबल पे पार्सल्स पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है काफी सारी शॉपिंग कर रही हैं आप।
0: रूमा जी, देखिए ना, आजकल समय ही ऐसा है क्योंकि हम एक तरह से बोलते हैं ना, जितनी सुविधाएं हमें मिलती जाती हैं हम उतनी आलसी बन जाते हैं। तो बस यही सफर चल रहा है हर किसी की जिंदगी में, क्योंकि अगर हम बाजार जाएंगे उसके लिए समय लगेगा, समय जाएगा और फिर बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग रह जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो हम क्या करते हैं, बैठे बिठाए अपना काम करते रहते हैं और फोन तो हर किसी के हाथों में होता है।
1: बिल्कुल,
0: फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, देखा कि नहीं भाई यहाँ पे छूट मिल रही है या ये बढ़िया क्वालिटी का कुछ प्रोडक्ट है, फटाफट से ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका, मुझे तो ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। हालांकि इसमें जो हमारे स्थानीय व्यापारी वर्ग है वो मेरी बात सुन के शायद गुस्सा कर रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग का जो सबसे बड़ा असर हमारे स्थानीय व्यापार मंडल पर पड़ता है। और वैसे भी देखो, हम महिलाओं के ना कितने सारे काम होते हैं, बच्चे संभालने हैं, परिवार संभालना है और देखो अब हमें ये कार्यक्रम भी तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, तो इसके लिए तो समय चाहिए। और फिर अपने लिए जो हमें समय मिलता है उसमें इतना समय नहीं होता कि हम बाजार जाएं और शॉपिंग कर सकें। और आजकल तो इतने सारी ऑप्शंस हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, आपको वैरायटी मिल जाती है। ऑनलाइन साइट पे जाके आप कुछ भी सामान मंगवाना चाहती हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे आपका कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, कुछ भी आपको लेना है तो हम आराम से ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। बहुत सारी ऑप्शंस में से जो हमें अच्छा लगता है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, अलग अलग साइट पे ना अलग अलग चीजों के अलग अलग दाम होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फेस्टिवल सीजन हो तो फिर तो
0: डिस्काउंट भी मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: सेल चलती है
1: और ये डिस्काउंट जो है ना हम गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी की तरह काम करता है, क्योंकि इस टाइम की जो बचत होती है कहीं ना कहीं हमारे परिवार में हम उसका इस्तेमाल करती हैं, किसी के लिए नहीं करेंगी अपने लिए कर लेंगी। तो देखो फेस्टिवल में ये जो डिस्काउंट मिलता है इसका फायदा उठाना तो हम सबका राइट है। और मुझे लगता है कि साथ साथ मनोरंजन भी अगर
0: बहुत जरूरी है। जी, तो दोस्तों आप हमारी बातचीत से वैसे तो समझ ही चुके होंगे कि आखिर बात कौन सी होने वाली है आज के कार्यक्रम में, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखते हैं, बताते हैं आपको कि ऐसी कौन सी बातचीत हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं, जानकारी लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल रुचिका, जो हमारा हिंट है वो दोस्तों तक जा पहुंचा है और वो जान चुके हैं कि आज महिलाएं यहाँ बैठ के कौन से विषय पर चर्चा करने वाली हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ऐसी ही चर्चा में शामिल हुआ करें, बहुत अच्छा लगेगा और डिस्काउंट के साथ साथ इस म्यूजिक का भी फायदा उठाते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत को, उसके बाद हम फिर से जुड़ते हैं आप सभी के साथ इस बहुत ही खास जानकारी के साथ।

0: रुचिका, बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया है आपने हमें और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हमारे दोस्त भी खुश हुए हैं।
1: जी
0: और ये जो आपके चेहरे पे आज खुशी दिख रही है ना, मुझे आपके जो बॉक्सेस मैंने देखे हैं तरह तरह के, और इसमें ढेर सारी आपने जो शॉपिंग करी है वो अलग ही है। तो रुचिका, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को भी बताओ इस खुशी का राज क्या है।
1: अभी हम बात कर रहे थे इस गीत से पहले कि जैसे आपने कहा ना कि हम शॉपिंग के लिए टाइम नहीं होता है, हम गृहिणियों के पास खास करके, तो हम फटाफट से ऑनलाइन करते हैं। तो एक बात कहना चाहते थे कि देखिए, सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है आजकल।
0: बिल्कुल कर रहा है।
1: तो सोशल मीडिया के जरिए क्या होता है कि अब जैसे हम यहाँ धर्मशाला में हैं, धर्मशाला में हमने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे शॉप में कोई मटेरियल हम सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हर जगह तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जब हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तभी लोग हमें जान पाएंगे, हमारे
0: बिल्कुल
1: चीजों के बारे में जान पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है कि वहां पर हम अगर एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट के रूप में, या अपने जो हम सूट सेल कर रहे हैं, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं हम, तो वो हम लोगों तक कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमें रेडियो गुंजन से अगर कोई चीज पहुंचानी है किसी के घर, तो हमें घर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही हमको यहाँ बुलाना
1: जी
0: पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: हम सीधा लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी एडवांटेज है सोशल मीडिया की और ऑनलाइन
1: बिल्कुल
0: ट्रेडिंग की। आप देखिए, हमने पहले ही कहा बहुत सारी इसमें वैरायटी मिल जाती है। हम कई बार किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं और समय की कमी होती है,
1: जी
0: और वहां पे हमें चीज छांटनी होती है अपने लिए, कुछ स्पेसिफिक ढूंढना होता है, तो कई बार क्या होता है, हम 10 दुकानें देख लेते हैं तब भी हमें वो
1: पसंद
0: सामान
1: नहीं
0: नहीं मिलता
1: आते।
0: या पसंद नहीं आता। और ऑनलाइन माध्यम से जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो अलग अलग साइट्स पे जाके हमें उसकी बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है, बहुत सारा उसमें डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं। और अलग अलग जो साइट्स हैं वो अलग अलग चीजों में तुलनात्मक जो उनका आंकलन रहता है वो भी दिया होता है, और हमें चीज सिलेक्ट करने में आसानी होती है।
1: बिल्कुल
0: और जिस चीज के लिए आप देखो, हम यहाँ से निकलेंगे, बस लेंगे, बाजार तक जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ पे हम सिर्फ एक फोन के बटन की क्लिक के ऊपर बैठे हैं, अपनी उंगलियां चलाएंगे और हमारे सामने पूरा मार्केट जो है वो आ जाएगी। तो समय की
1: बिल्कुल
0: बचत भी हो रही है इसमें, वैरायटी भी हमें मिल रही है, और बहुत अच्छा सामान हमें घर पे मिल जा रहा है, डोर टू डोर डिलीवरी मिलती है, तो और अच्छा लगता है।
1: लेकिन उसी वजह से हमारे में आलस भी बढ़ता जा रहा
0: ये तो है,
1: है
0: बिल्कुल
1: क्योंकि बैठे बिठाए सारी चीजें हमें मिल रही हैं, तो हम चल फिर नहीं रहे हैं। क्योंकि ऐसे होता है ना कि मार्केट जाना होता है तो बस बाय बस, या बाय अगर हम अपनी व्हीकल से भी ट्रैवल करते हैं तो कम से कम ट्रैवल तो करना पड़ता है, घूमना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल। लेकिन हमने वैसे भी कहा ना कि आज का समय जो है वो बहुत कम है सबके पास, सभी वर्किंग है, और जो महिलाएं घर में सिर्फ घरेलू कामकाज कर रही हैं, तो आप देखो सुबह से लेकर शाम तक कितने काम होते हैं, फिर अपने लिए जब काम की बारी आती है तो सुस्ती छा जाती है।
1: जी
0: तो अगर ऑनलाइन हमारी बहनें शॉपिंग कर रही हैं, तो उनसे तो एक हम यही बार बार कहेंगे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, तो बेशक आप बाजार मत जाइए, लेकिन घर में अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर
1: करते
0: करते रहिए।
1: रहिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आजकल हमारे पास अपने लिए समय है ही नहीं, दूसरों
0: बिल्कुल
1: के लिए समय हम, मतलब कि अगर एक गृहिणी की बात करें तो वो पूरी फैमिली के लिए समय निकाल लेती हैं, चाहे जैसे भी एडजस्ट हो सके, 4 बजे उठना पड़े, शाम को 10 बजे सोना पड़े, लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बात जब अपनी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि समय ही कहाँ है।
0: बिल्कुल। और देखो रुचिका, आजकल क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिलती हैं। आपने अगर अपने बच्चे का एडमिशन कहीं पे करवाना है
1: जी
0: और आप अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, वहां पे आप फीस का कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में या स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में, तो आप ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स पे अपने अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की डिटेल दी होती है, वहां से हम घर बैठे आसानी से इन चीजों का मूल्यांकन करके
1: कर सकते
0: अपने
1: हैं।
0: बच्चे के भविष्य के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो गया है आजकल, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन आपको अपने कॉलेजेस के बारे में डिटेल बता
1: और
0: देते हैं।
1: सबसे बड़ी बात कि ऐसा होता है ना, कोई कॉलेजेस दूर होते हैं तो
0: बिल्कुल
1: हमें जैसे अब बारिश का मौसम हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम जा ना पाए
0: नहीं जा पाते हैं,
1: दूरी की
0: बिल्कुल
1: वजह से, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, अपनी सीट तो
0: बिल्कुल
1: बुक कर सकते हैं, उसकी वजह
0: बिल्कुल।
1: से हमें
0: और
1: बेनिफिट
0: देखो
1: मिलेगा।
0: बिल्कुल, और इतने फायदे हैं आजकल मिसाल इन चीजों के कि इन फायदों को गिनाना उंगलियों पे बहुत मुश्किल है। आपने अगर कहीं बाहर जाना है, कहीं जा रहे हो, आपको बस लेनी है, टैक्सी बुक करनी है, या आपको हवाई जहाज की टिकट बुक करनी है, आप ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करके आसानी से वहां से अपना एक प्रिंट आउट लेके आप वहां पे चले जाइए, टैक्सी या कहीं पे भी, हवाई जहाज पे भी आप जा रहे हैं, वहां पे अपनी वो फोन पे ही अपनी टिकट दिखा के आप अपनी ट्रैवलिंग को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो कितने सारे फायदे हैं और मुझे लगता है आपको भी बहुत सारे इसके फायदे दिख रहे हैं जो आप बताने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।
1: बिल्कुल रूमा जी, फायदे तो बहुत हैं, क्योंकि देखिए ना, हमें कई बार ऐसा होता है जब हम दुकान जाते हैं तो हम समय की ही कमी की वजह से हम हर जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो हम फटाफट से एक ही दुकान जाते हैं और चीज ले लेते हैं, फिर दूसरी दुकान अगर हम जाएं भी अगर ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए तो वहां हमें पता चलता है कि ये चीज हमने इतने मिली और यहाँ तो इससे कम में मिल रही है, फिर वो पछतावा होता है। तो ऑनलाइन का वो फायदा है कि हमें पता, वहाँ देख सकते हैं हम
0: बिल्कुल
1: कि यहाँ कितने की है, वहाँ कितने की है, वहाँ कितने की है।
0: बिल्कुल, और ये सब चीजों के जो रेट कंपैरिजन के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है
1: जी।
0: एक साइड से दूसरी साइड में हम मिनटों में घूम आते हैं, पूरा बाजार हम देख आते हैं
1: जी।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छा है, समय की उपयोगिता और समय की जो बर्बादी है वो बिल्कुल नहीं होती है इसमें, हम सदुपयोग कर सकते हैं। खाली समय का, बाजार नहीं जाने का समय है तो हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, और घर में जब सामान आ जाता है ना, उसको देख के तो वैसे ही मन खुश हो जाता है कि देखो हमारा टाइम बचा, हमारी मेहनत एक्स्ट्रा चली गई, और जो हमने समय बाजार जाने से बचाया था वो हमने किसी और काम में उसको खर्च कर लिया।
1: बिल्कुल, फिलहाल मुझे लग रहा है कि हमारा समय जो है वो एक गीत की ओर होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो बहुत ही शॉपिंग की बात आती है तो खास करके महिलाओं या लड़कियों के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान छा जाती है, रौनक सी आ जाती है, जैसे फिलहाल अभी हमारे चेहरों पर देखने को मिल रही है आप सभी को।
1: ऐसी बात नहीं है रुचिका, मैं आपको काट रही हूँ, लड़कों के चेहरे पर भी बहुत अच्छी मुस्कान आती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी सामान्य मार्केट में ना, बच्चों को लड़कों को खास करके जो अच्छे अच्छे ब्रांड जो लड़के हमारे आजकल के पहनना चाहते हैं ना, वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। और ये ऑनलाइन जो शॉपिंग की सुविधा हमारे लिए आई है, उसमें एक से बढ़कर एक ब्रांड जो है वो लड़के हमारे मंगवा लेते हैं यहाँ पे।
0: लेकिन पता क्या होता है, लड़कों का मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मतलब लेते हैं, ब्रांडेड चीजें हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। लेकिन हम लड़कियों का क्या होता है, अगर जरा सी कोई चीज दिख गई ना तो हम फटाफट से उस टाइम ही ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और आपको पता है ये जो हमारी एकदम से जो लत लग गई है हमें, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के जो फायदे तो हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं। और ये जो लत हमले लग चुकी है ना, ये बहुत खराब लगती है मुझे, क्योंकि मेरी जो आदत हो गई है रुचिका, मैं कोई अच्छी चीज देखती हूँ, थोड़ी देर सोचती हूँ नहीं नहीं नहीं लूंगी, और दूसरे दिन वही एड मेरे सामने
0: बार बार आती है।
1: और फिर तीसरे दिन मैं उसको चलो ले ही लेती हूँ,
0: मान दिख रही है सामने भी।
1: और इस वजह से क्या हुआ है कि हमारी शॉपिंग की जो लत है वो बढ़ गई है। पहले हम महीने 1.5 महीने में बाजार जाते थे, अपनी कोई बहुत जरूरत होती थी, शादी ब्याह या फंक्शन होता था या कोई त्योहार होता था, तब तो मजबूरी होती थी कि हमने जाना ही है और शॉपिंग करनी है, उसी दौरान हम जाते थे। और कई बार क्या होता था कि समय की कमी के कारण या साधनों की कमी के कारण हम उस जरूरी शॉपिंग को भी अगले महीने पे टाल देते थे,
0: पोस्टपोन कर देते थे जी।
1: लेकिन अब क्या हो गया है, जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आया है तब से हमें चस्का लग गया है, और ये चस्का बहुत खराब है। आए दिन अगर मैं अपने खर्चों की बात करूं तो मेरा ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा आने के कारण खर्चे जो हैं वो 10% बढ़ गए हैं। और पहले यही 10% खर्चा जो होता था वो बिल्कुल कम होता था, कई बार साल भर भी हम बाजार नहीं जा पाते थे, और आजकल देखिए हर एक चीज। दूसरा एक हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी एक दूसरी चीज आई है ऑनलाइन, आजकल हम खाने का भी ऑर्डर करने लग पड़े हैं, और ये चीज भी हमें नुकसान दे रही है, क्योंकि पहले हम महिलाएं बड़ी खुश होकर अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ताजा खाना बनाते थे कुछ भी, लेकिन आजकल के बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जोमेटो स्विगी जैसी एप्स जो है वो लोगों के घरों में पहुंच गई हैं, वहाँ माँ की रसोई से खाना तो आता है लेकिन माँ के हाथ का बना खाना नहीं होता है, और उस माँ की रसोई में वो खाना कितना साफ और कितनी शुद्धता से बनाया गया है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी हमें नुकसान हो रहा है। और आपने देखा होगा आजकल के समय में बहुत सारी बीमारियों ने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी घेर लिया है। ओबेसिटी सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, हर कोई व्यक्ति जो है आजकल छोटी उम्र में ही हम लोगों को वीपी और थायराइड जैसी बीमारियों ने घेर लिया है, और इसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है ये जो ऑनलाइन साधन हमें मिल गए हैं ये भी है। दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक दुष्प्रभाव जो बहुत बड़ा जो मैं देखती हूँ, और उस दुष्प्रभाव का असर मुझ पे भी हुआ है, मैंने अपनी आंखों की रोशनी पे अगर मैं गौर करूं तो ऑनलाइन शॉपिंग या 24 घंटे ऑनलाइन रहने से पहले मुझे चश्मे की जरूरत नहीं थी, मुझे आंखों में पानी आने की समस्या या खुजली की समस्या कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से फोन आया है, आप देखो हमारे फोन में कुछ भी नहीं आ रहा होता है, फिर भी हम थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, अपना फोन देख लेते हैं, कुछ आया तो नहीं, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं, और हर वक्त ऑनलाइन रहने से हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ा है, हमारे मेंटल प्रेशर जो है वो भी बढ़े हैं,
0: तनाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल,
1: और इन सब चीजों से हम छूट नहीं पा रहे हैं, ये भी एक देखो नशा एक बहुत बड़ी बुराई है, हम हमेशा चर्चा करते हैं इस विषय पे, लेकिन मुझे लगता है कि हर वक्त ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे या ऑनलाइन शॉपिंग पे या किसी भी ऑनलाइन तरीके से नेटवर्क से जुड़े रहने से हमें जो है एक लत लग गई है। और मुझे लगता है कि कई बार मैंने अपने कई दोस्तों को सुना है, गलती से हमारा मोबाइल फोन घर में छूट जाता है तो हम कहते हैं कि आज मैं बीमार फील कर रहा हूं। तो ये एक ऐसी बीमारी है हम लोगों को जिसने हमें अपने जाल में जकड़ रखा है, और ये इन सब चीजों से थोड़ा सा घबराहट होती है।
0: बिल्कुल होती है घबराहट, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें दिख रही होती हैं अपनी सुविधाएं। सुख सुविधाओं के आगे हमें कुछ नहीं दिखता। पहले जब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होती थी तो हम बहुत सोच समझ कर खर्च जो है, अपने घर खर्च हो चाहे खुद पे खर्च करने हो, बहुत सोच समझ कर करते थे क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि नहीं इतने पैसे चले गए, हमारे पास तो इतने ही पैसे रह गए। लेकिन जब से ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू हो गई है ना, फायदे भी हैं लेकिन नुकसानों की हम बात करें तो फोन से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही, हमें नहीं पता पैसे चले गए तो चले गए क्योंकि अकाउंट से जा रहे हैं, तो इतना फील नहीं होता है जितना कि जब हाथों से हम पैसे देते हैं।
1: बिल्कुल। और रुचिका आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो हमारी बहुत सारी महिलाएं परेशान हो गई थी कि अब हमने जो जमा पूंजी छुपा के रखी है अपने परिवार से, पति से या घर वालों से, अब वो हमें बैंक में जमा करवानी पड़ेगी। और बहुत सारी महिलाओं के पास इतनी जमा पूंजी हो गई थी कि वो गिनती से बाहर थी। और आजकल के समय में अगर हम महिलाओं को पूछें बचत के नाम उन्होंने क्या किया है, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, या मैं औरों की बात नहीं कहूंगी, मेरी खुद की भी बात करें तो मैंने बचत के नाम पे मेरी वार्डरोब जो है वो कपड़ों से भरी है, उसमें अननेसेसरी ऐसी चीजें मैंने मंगवा रखी हैं जिनका शायद मैंने एक आध बार इस्तेमाल किया है और दोबारा उन चीजों की ओर देखा भी नहीं। और सुविधा के नाम पर हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा तो कर लिया है लेकिन उनका इस्तेमाल ना के बराबर है।
0: बिल्कुल। और ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही है जिसकी वजह से हम जो महीनों की नहीं बोल सकते हैं, जिंदगी भर की कमाई को हम धोखाधड़ी में गवा देते हैं।
1: बिल्कुल। ऑनलाइन अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें धोखाधड़ी की संभावना 70% से भी अधिक बनी
0: बढ़ती
1: रहती
0: ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमने खुद ही अपने आप को पब्लिकली पेश करके रख दिया है, हमारी पर्सनल जानकारी, चाहे वो हमारे अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और भी बहुत सारी हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑनलाइन मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। और ये ऑनलाइन जो विक्रय कंपनियां होती हैं, ये हमारा डाटा कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं और उसका कई बार मिसयूज भी होता है। और आजकल के समय में AI का जमाना आ गया है तो आजकल तो और भी ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं, तो इसके फायदों के साथ साथ नुकसान मुझे लगता है बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग जैसे ना व्यापार की हम बात कर रहे थे, तो दुकानदार जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें उन शरारती तत्वों की जो कि साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो क्या करते हैं उनकी IDs को हैक करके, या तो IDs की एक डुप्लीकेट कॉपी ID अपने नाम से बनाकर या उन्हीं के नाम से बनाकर लोगों को कम प्राइस का लालच देकर उनसे जो है ऑर्डर मंगवा लेते हैं या करा लेते हैं, पैसे मंगा लेते हैं और फिर ऑर्डर के नाम पे कुछ और भेज दिया जाता है।
1: बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हमें दिखाया जाता है और बेचा कुछ जाता है और हम लोग सस्ते के लालच में अक्सर जान से विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा ही नहीं है, कई बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब आपकी बहुत ज्यादा होती रहती है तो ये जो साइबर क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं इनकी नजर बनी रहती है हम पे, कौन व्यक्ति कहाँ से क्या खरीद रहा है, क्या कर रहा है, उसकी चॉइस क्या है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे बार बार जाते हैं या ऑनलाइन बार बार जाते हैं तो हमारी चॉइस जो है वो इंटरनेट के माध्यम से सबके सामने जाहिर होती है कि हमारी नेचर किस तरह की है, हम किस तरह की गतिविधियों में इंडल्ज रहते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी आप अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलो तो आपके सामने वही एड्स आती हैं जो आपका जिसमें इंटरेस्ट
0: हो, जैसे हमारा मन करता है ना, और वही चीज हमारे सामने आ जाती है।
1: बिल्कुल। और देखो मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है, हमें करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ये जो इस्तेमाल है वो सोच समझ के करना चाहिए। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल जानकारियां जो हैं वो साझा करने से हमें बचना चाहिए। और ज्यादातर धोखाधड़ी होती है हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, कई बार व्यक्ति जो है, आपने शॉपिंग की आपको आदत है, सामने वाला जो हैकर है आपका अकाउंट जो है उसको हैक कर लेते हैं, उसके बाद वो आपसे OTP मांगते हैं और कई बार हम बिल्कुल उसमें आके भोलेपन में आके या अनजानेपन में OTP शेयर कर देते हैं और हमारे खाते खाली हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारा नुकसान हमें इन चीजों से होता है। और एक चीज और देखी है आपने, आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, तो हम लोगों की एक हैबिट है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, अपनी अच्छी अच्छी फोटोज डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, और कई बार जो है वो गलत क्रिमिनल नेचर वाले जो व्यक्ति होते हैं हमारी उन फोटोज का गलत इस्तेमाल करते हैं। और पहले ही कहा कि एआई का जमाना आ गया है, और ऐसे में क्या होता है कि हमारा चेहरा किसी और के बॉडी पे फिक्स करके वो कुछ भी हमें किसी भी रूप में प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारी मेरी आजकल के युवकों से, खास करके युवतियों और युवकों से, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एआई की माध्यम से कोई भी फोटो आप अपलोड ना करें, इसका मिसयूज हो सकता है। पोर्नोग्राफी के बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं जिनमें बाद में हम शर्मिंदा तो होते ही हैं। सोसाइटी में अपमानजनक जब स्थिति में हम आ जाते हैं तो हम उस अपमान से बचने के लिए या अपना मुंह छुपाने के लिए हम गलत काम भी करने से डरते नहीं हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें अपने बच्चों को, खुद को भी और अपने आसपास सभी को इस बारे में जरूर अवेयर करना चाहिए कि ऐसा कोई भी कंटेंट आप अपने सोशल मीडिया ऐप पे ना डालें जिससे कल आने वाले समय में हमें या हमारे परिवार को किसी मुसीबत का सामना करना पड़े।
0: बिल्कुल सही कहा है दोस्तों रूमा जी ने, क्योंकि अक्सर आप देख ही रहे हैं कि आए दिन नए नए केसेस हमारे सामने तो आ ही रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो क्रेज है ना, हर किसी के सर पर चढ़कर सवार है। हर कोई चाहता है कि ये लोग इतने फेमस हो रहे हैं तो हम भी हो, ऐसे ना वैसे, मतलब कुछ भी करके बस फेमस होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उसी के चलते हम अपनी हर एक सीक्रेट से सीक्रेट जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, और कुछ लोग उसी का फायदा उठाकर जो है फिर हमें ब्लैकमेल करते हैं और हमारे से जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फिर वो फ्रॉड हो, चाहे वो ठगी है, कोई भी है, किसी भी तरह से फिर हमारे, हमें जो है अपने झांसे में ले लेते हैं। तो उससे पहले सही बात यही है कि हम पहले ही सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने आप को सेव रख सकें। तो उसके लिए हमें हर तरह की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो साइट्स के बारे में जानिए। जो भी साइट आपको लगे कि ये ट्रस्ट वाली साइट है तो उसी पे जाएं, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देखें। सिर्फ पैसे कम देकर, डिस्काउंट देकर एकदम से किसी भी साइट पर विश्वास ना करें, क्योंकि एकदम से जब हम विश्वास कर लेते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो फ्रॉड कर रहे होते हैं वो स्टार्टिंग में आपको अपने झांसे में लेने के लिए बहुत ही प्यार से आपको पैसे वापस भी कर देंगे या फिर कुछ उस तरह से एक प्रोडक्ट भेज भी देंगे, लेकिन आगे उन्हें पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर किस तरह से है, या मतलब एकदम से विश्वास कर लेते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सतर्क हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को सतर्क रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से समय बदल रहा है, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये साइबर फ्रॉड भी उसी तरह से मॉडर्न होते जा रहे हैं, और अलग अलग तरकीबें, चाहे वो हमारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे हमारी जिंदगी से रिलेटेड हो, हर समय हर कदम हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना है। फिलहाल हमें कार्यक्रम में भी आगे बढ़ना चाहिए।
1: हाँ, और एक प्यारा सा गीत सुनने का समय हो गया है
0: जी। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत को, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत के साथ।

0: तो दोस्तों, इस बड़े ही प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन शॉपिंग में हम किस तरह से सतर्क रह सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की या अपने संचित धन की सुरक्षा कर सकते हैं। और आजकल के समय की सबसे बड़ी जरूरत है खुद की सिक्योरिटी।
1: बिल्कुल
0: तो रुचिका, हमने बात करी इसके फायदों की और इससे होने वाले नुकसान की भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जो हमारे दोस्तों को तो जाना चाहिए। फायदे और नुकसान की बात तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं नुकसान हो जाता है इस वजह से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के कारण, तो हम कहाँ पे इसकी शिकायत कर सकते हैं, ये जानना भी हमारे दोस्तों के लिए
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी है।
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, अब हम रूमा जी से ये जान लेते हैं कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है, कोई ऐसा स्कैम हो जाता है, हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी को कर दी और हमारे पैसे जो है गलत अकाउंट में चले गए, और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जो फ्रॉड वाले होते हैं वो अक्सर या तो ब्लैक सिम से आपको कॉल करेंगे या तो फिर कुछ भी अपने तरीके से, फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार पैसे चले गए तो फिर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फिर हम क्या करें, किस तरह से अपनी मनी को सेफ रखें, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी मनी की सेफ्टी के लिए। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रूमा जी से जानते हैं कि आखिर इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से खुद को, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि खुद को कैसे पीछे लेकर आए थोड़ा सा।
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो रुचिका, हमें खुद को ही रोकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जहां हम बाजार की है तो हम बाजार जाएं, वहां से शॉपिंग करें, या फिर अगर हमें किसी भी वजह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोई करनी पड़ती है तो हमें उसकी सेफ साइड देखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए कि कहीं हमें नुकसान ना हो। बिना वजह हमें किसी को अपने ओटीपी नहीं बताने चाहिए। और एक चीज आपने देखा होगा रुचिका, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि आपके फोन पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है और वहां से आता है कि आपके खाते में पैसा ट्रांजेक्शन हो गया।
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद सामने से किसी व्यक्ति का फोन आ जाता है, मेरी माँ या मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और मैंने हॉस्पिटल में बिल पेमेंट के लिए पेमेंट कर रहा था, लेकिन आपका जो नंबर है वो हॉस्पिटल वालों के नंबर से मिलता जुलता था, एक डिजिट का फर्क था और ये पैसा आपके खाते में चला गया है। और वो बहुत ही इस तरह से प्रिटेंड करते हैं, इस तरह का बर्ताव उनका होता है कि हम एक पल के लिए उनके झांसे में आ जाते हैं, हमें लगता है वाकई कोई व्यक्ति मुसीबत में है, वो रो रहे होते हैं और उनकी बातों से आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते कि वो फ्रॉड है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि प्लीज आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए, और हम भी देखते हैं हमारे मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है और हम देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत फर्द में हम फटाफट से अपना वो पैसा उनके खाते में भेज देते हैं, लेकिन जब हमें होश आता है तब तक हमारा पूरा का पूरा खाता खाली हो चुका होता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। और मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा, जब भी आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है कि आपके खाते में हमने गलती से कोई पैसा डाल दिया है, तो पहले अपने बैंक में संपर्क करें। अगर व्यक्ति कोई हॉस्पिटल से फोन कर रहा है या कहीं से भी कर रहा है, उसको रुकने के लिए कहें
1: जी।
0: उसको कहें कि मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ लेकिन पहले मैं अपना बैलेंस चेक कर लेता हूँ। अगर वो फ्रॉड होगा तो वो उसी समय फोन काट देते हैं। और रुचिका, अभी बड़ी दूर की बात नहीं करूंगी, यही वाक्या मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ। ऐसा ही मुझे फोन कॉल आया कि मेरी बेटी की शादी है और मैं यहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे हूँ और मैंने 5 लाख की ट्रांजेक्शन करी है और गलती से उसमें से 2.5 लाख जो था, 5 मैंने कैश कर दिया और 5 लाख आप या 2.5 लाख आपके खाते में चला गया। जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें मुझे मैसेज दिखा, लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि हम अक्सर जब भी बात करते हैं या कहीं अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम खुद लोगों को या बच्चों को स्कूलों में जाके या कहीं भी बताते हैं कि आपने ये चीज ध्यान रखनी है। और फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने तुरंत अपना खाता चेक किया तो मेरे खाते में उतना अमाउंट नहीं था, क्योंकि आपको पता होता है आपके खाते में कितना पैसा है। उसके बाद 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति का फिर फोन आया, मैडम प्लीज मेरा 2.5 लाख रुपए आपके खाते में आ गया और आप मुझे ये पैसा वापिस करिए। मैंने उसको कहा कि मैं अभी बैंक जा रही हूँ, मेरे को ऑनलाइन फोन चलाना नहीं आता है, मैंने उससे ऐसे ही बात कही, मुझे फोन चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आती है, आप मुझे कृपया करके अपना खाता नंबर दीजिए और मैं बैंक में जाके आपके खाते में पैसा ट्रांजेक्शन करवा देती हूँ। ये बात सुनते ही उस व्यक्ति ने सामने से मुझे ढेरों गालियां निकाली। आप सोच नहीं सकते कि उसने क्या नहीं कहा मुझे। और थोड़ी देर बाद मैंने जब अपना फोन चेक किया तो वो फोन से जो आपने कहा ब्लैक अकाउंट से मैसेज भेजते हैं वो मैसेज डिसअपियर हो चुका था। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहूंगी कि इसी तरह से थोड़ी सावधानी बरतें और अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो तुरंत कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने मानसिक विवेक से काम लें और सोच समझ के ही ट्रांजेक्शन करें, अन्यथा आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो
1: बिल्कुल बैंक तो जाना ही चाहिए कोई भी अगर ऐसी कॉल आपको आ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, या तो आपके कोई घर के मेंबर कहीं बाहर है तो उन्हें पता होता है कि कोई बाहर है तो वो उस चीज का भी फायदा उठाते हैं कि नहीं उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया है वो हॉस्पिटल में है तो उनके इलाज के लिए जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए, आपको आने में अभी देर लगेगी तो आप पहले ट्रांजेक्शन कर दीजिए और उसके बाद आप आराम से आ जाइए। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो हम भावनाओं में बह जाते हैं और फटाफट से स्टेप ले लेते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और कोई भी स्टेप उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए। खैर बैंक में पता करने से तो पता करना ही है, जानकारी लेनी है, लेकिन और हम क्या स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं रूमा जी जिससे कि हम उनके लिए उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकें, लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से ये प्रोसेस जो है उन्हें करना चाहिए?
0: बिल्कुल रुचिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार हर व्यक्ति अलर्ट नहीं होता है।
1: बिल्कुल
0: हर बार वो अपने आप को सेफ साइड में नहीं रख पाता है। कई बार क्या होता है हम भावुक होकर निर्णय ले लेते हैं और तुरंत व्यक्ति को आगे ट्रांजेक्शन कर देते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद आप पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जो उस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकता है। उसके बाद तुरंत से अपने नियर अबाउट जो भी आपका पुलिस थाना है उसमें कंप्लेंट कीजिए, या फिर हर एक थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प सेंटर होता है, आप वहां पे भी साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके भी अपनी कंप्लेंट उस स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपने पैसा ट्रांजेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप साइबर सेल में जाके कंप्लेंट कर देते हैं तो हमारी जो पैसा जा चुका है किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से उसके मिलने की संभावना 100% होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत जाता है वो पैसा हमें वापस नहीं मिलता है, और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है रुचिका, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दोस्त उस हेल्पलाइन नंबर को जरूर नोट करें, क्योंकि अक्सर हमारे सराउंडिंग में ऐसे कई केसेस होते हैं 100 में से 10 लोग जो हैं वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए नंबर है 1930 1930। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करवाएंगे उतनी जल्दी आपकी समस्या का हल होगा, उतना ही आपकी जो मनी है जो भी आपकी मेहनत की कमाई है वो वापस मिलने की संभावना होती है।
1: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना है, वैसे तो आप सभी कुछ जानते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि अगर आपको ऐसी कोई भी मतलब कि शक होता है, डाउट होता है किसी के मैसेज पे या किसी के कॉल पे, तो आप 1930 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि और सबसे खास बात कि रूमा जी ने कहा कि अगर आपके साथ धोखा हो चुका है तो कंप्लेंट करने के लिए बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि जितनी देर आप करेंगे उतनी ही फिर मुश्किलें आपको उस रिकवरी के लिए मिलेंगी। तो जितना जल्दी आप स्टेप लेंगे तो रिकवरी आपको उसी हिसाब से मिल सकती है।
0: एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी रुचिका, कि जब हम कि अपने खाते से कोई भी ट्रांजेक्शन कर देते हैं और हमें लगता है कि अब फ्रॉड हो गया है हमारे साथ, तो तुरंत से अपने बैंक को फोन के माध्यम से सूचित करें कि हमारा जो एटीएम है, जो भी हमारा कार्ड है, वीजा कार्ड है, जो भी है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं जानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम बैंक को सूचित नहीं करते हैं, ये हैकर्स इतने तेज होते हैं कि 4-5 घंटे के अंदर आपकी 10-12 ट्रांजेक्शन करके सारा खाता वो खाली कर देते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आप धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं, आपके पास अगर बैंक का फोन नंबर नहीं है तो तुरंत भागते हुए अपने बैंक में जाके वहां पे अपनी सारी बैंकिंग की जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़ी साइट्स हैं उनको बंद करने के लिए एटीएम और वीजा कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको एकदम से ब्लॉक करवाइए। ये बहुत अच्छा जरिया है आगे किसी भी शिकायत से बचने के लिए।
1: जी दोस्तों, तो रूमा जी मुझे अब लगता है कि जानकारी मतलब कि समय अब हो चुका है दोस्तों से अलविदा लेने का। खैर अलविदा लेने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन अभी भी चल रही है, या इस जानकारी से संबंधित आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो हमारा नंबर रहेगा
0: 9418431223। दोस्तों आप कोई भी जानकारी बेझिझक हमसे साझा कीजिए, हम आपकी उस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान का भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन रुचिका, मैं एक और भी बात अपने दोस्तों से, आपसे भी और खुद से भी कह रही हूँ।
1: बिल्कुल,
0: सतर्कता बहुत जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आपका अधिकार है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कीजिए, आपका समय बच रहा है, लेकिन सोच समझ के सावधानी के साथ करें।
1: जी दोस्तों, बहुत ही जरूरी है और ये खास बात है, क्योंकि हर दिन हमें सतर्क रहना, हर पल सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी आगे से, वैसे तो बहुत सतर्क हैं आप, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो उनसे भी आप बच सकें, खुद को अवेयर कर सकें। तो फिलहाल अब दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को और
0: रूमा को
1: कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपने इस प्यार को हमारे साथ बनाए रखिए और सुनते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं भारतीय रेल में जोड़े गए हैं, 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि PV मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही PV मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
0: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री

सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे महत्वपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चूही? क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते हैं, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते हैं।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
5: मेरा गेम ओवर।
6: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
7: रुको, सोचो और एक्शन लो।

गणपति के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोता 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

तो ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य

प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला

0: इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: इतने सारे पैसे?
2: Oh no!
1: मेरी ड्रेस पे 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
3: सुनो।
2: Oh no!
3: मुझे 500 रुपए देना।
4: तो क्या हुआ?
3: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
4: दिख तो रहे सही से।

कानू देशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत करने तो हाँ सारे ही कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी होने न कन्ने तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा समय है से तो हाँ तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो हाँ क्या काम करना है समय के अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी आना है क्योंकि समय के अनुसार जुड़ के ताई यहाँ इस कार्यक्रम कन्ने जेड़ा से तो हाँ जितने भी श्रोता न से जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ नंबर है सभी तो हाँ तक पहुँचाई देना

नंबर तो वहाँ तक पहुँचाऊँगा तो ज़रूर तो हाँ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल जेड़ा इसे करी सकते। स्टूडियो का जेड़ा नंबर है इसे तो वहाँ तक पहुँचा देना। नंबर है 701-8117091। नंबर तो वहाँ तक पहुँचाई तो है कने मौसम की ओर नज़र दौड़ाइए तो कुथी ना कुथी मौसम जेड़ा इसे अपना बदलाव जरूर लैदा है। अगर हाँ बारिश की गल करिए प्रदेश जेड़ा इसे 13 सितंबर तक जेड़ा बादल हैं तिना फ्री ते बरसना है तो जरूर जांदी बरसात है तो कुछ ना कुछ जेड़ा मौसम च बदलाव जेड़ा इसे जरूर रहना है तो मौसम के अनुसार तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है से रखना है। कने मानसून जेड़ा है मानसून की जेड़ा रफ्तार है इसे थोड़ी देरी धीमी भी रहने वाली है पर इसी कन्ने जेड़ा सप्ताह का आखिरी है जेड़ा बारिश का दौर है लग्या है या जाने वाला है तो जरूर इसी कन्ने तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है इसे रखना है। वैसे भी अगर हाँ कल भी गलबात की थी कि संजा का मौसम कने प्यागा का जेड़ा मौसम है से ठंडा ठंडक आला है तो इसी कन्ने तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है इसे रखना है। कने हाँ भी तुहां दा जेड़ा ख्याल है इसे जरूर रखना है इस गीत कन्ने।

अशु तो तुह सारे सुनिया ये गीत फिर त्या हाँ वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात उपर। आज के दिनें दी जेड़ा गलबात है से तुह तक जरूर हाँ पहुँचानी है, क्योंकि हर दिनें दी अपनी जेड़ा खासियत है से रहती है। कने आज के दिनें दी क्या खासियत है, पहले तो दिने पर जेड़ा नज़र है से दौड़ाई लेंदे न, दिनांक पर भी नज़र दौड़ानी है। 8 सितंबर 2026 दिया हाँ गल करिए, कने मंगलवार दा ये दिन है तो तुह जरूर आज के दिने दे जेड़ा जितने भी तुह अपने कामकार सोचे न या अपने कामकार भी करा दे होने न, कने अपना जेड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला है सभी सुना दे होने न। कने आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम गलबात करनी है सभी जरूर तुह तक पहुँचाते हैं। 8 सितंबर की गल करिए आज हाँ जेड़ा खास दिन सेलिब्रेट करा देन से करा देन अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे च गलबात करनी है। वैसे तो तुह अगर रेडियो प्यागा दा सुना देंगे तो तुह गुड मॉर्निंग धर्मशाला च भी सुनिया होना है, क्योंकि श्रोता जेड़ा न से अपना मन रेडियो कने लगाई रखते हैं, कने लगाना भी बनता है। क्योंकि कई बार होंगे ना कि आंदी है जेड़ा काम है घरे का काम भी हो जाता, कने हाँ जेड़ा मनोरंजन का जेड़ा साधन है सभी एक रेडियो है, कुछ जानकारियां जेड़ा न सभी तुह तक पुजी आंदियां। कने तो जरूर तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह कने जुड़ी सकते, कने हाँ कने गलबात जेड़ा इसे करी सकते। गलबात करने वास्ते जेड़ा हमारा नंबर है से फिर ते तुह तक पहुँचाई देन, अगर तुह नंबर नोट नहीं कित्या तो जल्दी जल्दी नंबर जेड़ा है से नोट करी लिया। नंबर है 701-811-7091। नंबर फिर ते तुह तक पहुँचाई ते कने हाँ फिर ते थोड़ा जहा अगे बढ़ते न, कने तुह तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचाते न, क्योंकि फरमाइशा कने गलबात भी जरूर करनी है, कने तुह सारी भी इस कार्यक्रम के सफर चाह कने जुड़ी सकते। तो चलते न सुनते न इस फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੰਦਨਾ ਜੀ ਵੰਦਨਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਰਵਾਣਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਸਿਆਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਲੋ हेलो नमस्ते
1: Hello.
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुम दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी
0: हां भी ठीक ठाक है जी तुह कुथु ते बोला दी कने तुह दा नाम की है जी
1: सुकड़े ते बोला दी हां
0: जी सुकड़े ते बोला दी माया जी
1: जी
0: ता माया जी क्या काम कार तुह छेड़िया क्या करा दे
1: कदी
0: बरखा लगी पौधी कदी धूप लगी पौधी ना जी जी आज हाँ गलबात करा दिन साक्षरता दिवस के बारे च ना जी कि जड़ा पढ़ाई है या अज्ञानता जड़ा से जो कुथी ना कुथी अगर हाँ कोई भी काम कर दें ना जी अगर हाँ सिलाई करा दिन पढ़ाई करा दिन पढ़ाई करी करी अहाँ आगे बढ़ दें ना जी जी मेहनत तो हर कम में च लगती है ना जी
1: सारे अपने अपने दिन तो जरूरी है जी
0: जी जी
1: जी
0: जी मेहनत भी जी
1: हमने मेहनत भी है
0: जी जी
1: जी
0: तो मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं है ना जी
1: जी
0: जी तो माया जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके जी कुंदिया जी तो हुंदी आवाज नहीं होती हेलो जी जरूर जी तो हुंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हुंदा तशो तो हम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने कार्यक्रम दे सफर जो अहां अगे बढ़ांदे ने कन्ने तुह जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर सुनते ने सब प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा कने इस कार्यक्रम च जल्दी जल्दी जुड़िया

हाँ बोला देने रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है इस तुह तक है 2 से 3 बजे तक। गलबात भी जरूर अहाँ तुह तक पहुँचा देन। तशो तो अज्ञानता जिहड़ा से तीजो अंधेरे जो जिहड़ा से जरूर मिटाने। शिक्षा दी जिहड़ा लो है से हर घर तक जिहड़ा से जलानी है, क्योंकि जलू शिक्षा दी लो हर घर तक पहुँचती है तो जिहड़ा अंधेरा है से दूर भागी आंदा है। इसी कन्ने सिर्फ अहां जो किताबा तक सीमित नहीं रहना है, अहां जो जिहड़ा से आस पास का कोई और ज्ञान है से भी जरूर अहां जो हासिल करना है, क्योंकि हर किसी दी जिहड़ा पसंद है से अलग अलग है। क्योंकि कईयों जो पेंटिंग करना पसंद है, कईयों जो सिंगिंग करना पसंद है, कईयों जो पढ़ाई करना पसंद है, किताबा करने प्यार है, कईयों जो जलो अहाँ कुछ दी पेंटिंग दिख देना तो हाँ सच्ची में जिहड़ा पेंटिंग दिख देना तो सह कुछ ना कुछ अहाँ जो अपनी ओर आकर्षित जरूर करी लेंदी है। कहीं हर दिन अहाँ कोई ना कोई कुसी ना कुसी अंदर कोई ना कोई जिहड़ा टैलेंट है से जरूर दिख देन। टैलेंट ताई बनता है जलू अहाँ तिस काम जो कर देन, अहाँ दा जिहड़ा हुनर है उस जो जरूर अगे ले करी आना है। अगर अहाँ अपने हुनर जो पहचान दे है पहले अहाँ खुद जो पहचान देना ची कि अहाँ च क्या खूबी है, सही खूबी अहाँ जो सफलता दी ओर ले करी जाती है। तो इसी कन्ने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकदे, कन्ने अहाँ कन्ने गलबात जिहड़े से करी सकदे, कन्ने अहाँ भी अपनी गलबात जो अगे बढ़ांदे न, कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है से अहाँ पहुँचा देन माया जी तक। तुह सारे भी इंजॉय करा, कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं तो सारे सुनिया एक गीत फरमाइश गीत बाद अहाँ फ्री ते तो हाँ तक पहुँची हन तो हाँ सारे दा फ्री ते स्वागत करते हैं माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे ही जुड़े हैं अपनी रेडियो तो शशि कहने गलबात अहाँ जरूर करा देन गलबात भी तुह तक पहुँचा देन कने जड़ा गीत संगीत है सभी जरूर तुहां तक पहुंचा देना। तां श्रोताओं शिक्षा दी अहां गल करिए तां शिक्षा जिहड़ा है सबसे शक्तिशाली जिहड़ा हथियार है से जिसका उपयोग जिहड़ा है से अहां दुनिया जो बदलने वास्ते भी करी सकते। शिक्षा दा जिहड़ा ज्ञान है से अहां अंदर होना जरूरी है। अजकने दौर की अहां गल करिए डिजिटल दौर है साक्षरता का जिहड़ा महत्व है से बड़ा ही ज़्यादा बड़ी है। इसी कन्ने अहां हर दिन की जिहड़ा खासियत है से जरूर दिखदे न कने मोबाइल फोन का जिहड़ा यूज़ है से सही तरीके ने करदे न कि गलत तरीके ने करदे न से अहां पर निर्भर करते हैं। कने अगर अहां पढ़ाई करते हैं ताई एक बच्चा जिहड़ा है से देश का भविष्य है। अगर से मेहनत करता है मेहनत करी करी अपनी जिहड़ा पढ़ाई है या शिक्षा जिहड़ा ग्रहण करता है तो जरूर अपने सपनों जो भी साकार करता है कने जिहड़ा देश का भविष्य है उस वास्ते भी मेहनत जिहड़ा है से करता है। तशो तो तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया समय फ्री तो हाँ तक पहुँचाई देन समय होया कार्यक्रम च 2:34 तो हाँ भी समय के अनुसार कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने अगली जिहड़ा फरमाइश तो हाँ तक पहुँचाते हैं तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये गीत फरमाइश ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुई है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक हाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। इसी कने गलबात अह करा दे थे मौसम दी तो मौसम दी जड़ा करवट है से जरूर थोड़ी थोड़ी बदलू दी है तो मौसम के अनुसार तू अपना जेड़ा ख्याल है से रखने 11 12 13 सितंबर दी अह गल करिए तो निचले जेड़ा क्षेत्र हैं या जेड़ा पहाड़ी क्षेत्र हैं तिथू जेड़ा गर्ज करने चमक करने जेड़े से बारिश दी जेड़ा बोचारे गिरने दी जेड़ा संभावना है से जरूर जताई हुए है। हूँ भी तुहां मौसम दे जेड़ा हाल हैं से जरूर दिखा दी होनी न कदी जेड़े से धूप लगी पौधी कदी जेड़े से बरखा लगी पौधी तो जरूर मौसम दे अनुसार अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखने क्योंकि जांदी बरसात जेड़े से बड़िया सारिया बीमारियां जेड़े से छड्डी करी जांदी है क्योंकि सर्द गर्म जलू चली पौंदा है तो कुथी ना कुथी आहंदा जेड़ा स्वास्थ्य है सभी आहन जो दस्तक देना शुरू करी दे तो अपने स्वास्थ्य का जेड़ा ख्याल है से जरूर रखना है क्योंकि सर्दी जुकाम तो नॉर्मल है बुखार भी पर तो हाँ आए दिन न्यूज़ सुनते न कने जेड़ा न्यूज़पेपर दे पन्ने न तिना जो भी कुथी ना कुथी पढ़ते न तो हाँ तो हाँ भी है न्यूज़ सुनी होनी है कि बुखार दी वजह ने जेड़े से एक जेड़ा छोटी बच्ची थी तिहादी जेड़ा मृत्यु है से हुई हो तो हाँ भी अपना जेड़ा तुहें लगता है कि छोटी दे भी बीमारी है तो अपना जेड़ा चेकअप है से ज़रूर करवा क्योंकि छोटी छोटी जेड़ा लापरवाहियां न सही हाँ जो बड़ा जेड़ा दस्तक है से दे करी जांदियां न इसी कन्ने आज अहां जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दी न जरूर गलबात भी तुहां सुना दोने न सम्मान तरक्की जेड़ा सम्मान कने तरक्की दे जेड़ा दरवाजे न से खुलदे न तो कुथी ना कुथी इंसान च जागरूकता जेड़ा से जरूर फैलदी है या अच्छे बुरे दा जेड़ा फर्क पूरा ही जेड़ा समझ है से अहां जो होंदा है तो जरूर इसी कन्ने जेड़ा साक्षरता दा दिवस जेड़ा है से अज अहां अंतरराष्ट्रीय रूप च बना दे न कने तुहां भी सारे ही इस दिन जो जरूर इंजॉय करा दे होने न श्रोताओ इसी इंजॉय कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी थोड़ा दिया अगे बढ़ाते न कने अहां भी तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है पहुँचाते न इंतजार है कि नहीं है तुहां जो थोड़ी दी अपनी जेड़ा हाजरी है सभी जरूर लगाई दिया कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया जल्दी जल्दी अगर गलबात करना चाहते न तो जरूर नंबर तुह तक पहुँचा देना नंबर है 701-811-7091 इस नंबर पर तुह मैसेज करा अपनी फरमाइश जेड़े से जरूर भेजी सकते कि तुहां कुंडिया जेड़ा पहाड़ी गीत है जेड़ा तुह जो सबसे ज़्यादा पसंद है हर किसी की अपनी अपनी पसंद है जालू तुहदी पसंद अह तक पहुँचती है तो कार्यक्रम का जेड़ा सफ़र है से बड़ा ही प्यारा लगता है तो इसी सफ़र जो और प्यारा बनाते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते ना

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ए गीत ए फरमाइश फिर यहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर सुनते नि सा प्यारी दिया फरमाइशा जो प्यारे दे गीत जो

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अरे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
4: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए। उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

0: अभी क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यही हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य

पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है जीवन को रो और सचिन कपूर हाजिर बच्चों को कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। ठीक ने तो है सब, उम्मीद है कि तो है सब खरे भुणे हिन, सियाने रहा ध्यान किए सौरख को गर्दे भुणे करे जो सियाने तो सुसोगी भुंदेन त्यारा खास ख्याल किया सौरख को गर्दे भुणे है ना। बच्चे दे सियाने रहो अक्सर बलनों श्रोताओं की खास ख्याल किए सो रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और जो शख्स सियाने और बच्चे का ख्याल ना रखता श्रोताओं सो सोच लिया तसी अंदर गया सो इंसानियत ने मानवता ने हाँ, और सियाने जो भी किया सो जो हल्के तियों बेहतरीन गाइडलाइन की सो देना चाहिए दिया और बेहतरीन तरीक़ों की सो तियों भी ट्रीट करना चाहता है, प्यार होगी कि सो ट्रीट करना चाहिए और अच्छी राह पर के सो चलाने वास्ते नौजवान युवा जो या त्यारे घर जितने भी तियाँ थो हल्के जितने भी है ना जै त्यारे पुत्रा नोखा दिहो जुआइया तियाँ वास्ते तियों भी किया सो अच्छी गाइडलाइन की सो देना चाहती हैं और अच्छी सिख सलाह किया सो देना चाहते हैं। तो हम सचिन कपूर है जी इंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर बुझगो तो सभी का बड़ा बड़ा स्वागत है, मोटा मोटा स्वागत है। तो सब श्रोता सोगे जरूर बने सकते हैं इस समय धर्मशाला में मौसम की है श्रोताओं सो करखन करखा करवट जरूर बदलू करता है, दो त्राए मौके की है सो छिट्टी भी पेन श्रोताओं इस समय री गल करूँ तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और नमी री गल करूँ तो लगभग 80% की है सो नमी है श्रोताओं। यह मौसम इस समय धर्मशाला रहा और विजिबिलिटी की है श्रोताओं 108 किलोमीटर तक है। तो इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता असुगी जरूर जुड़ी सकते हैं बनी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो हो नहीं सकते हैं जुड़ने वास्ते बढ़ने वास्ते अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते नंबर तो तुसु पता है इस नंबर पर तो है ज़रूर कॉल करो श्रोतों 7088879 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर कर लूँ साझा कर लूँ हाँ 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं श्रोतों। आइए तो श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़न दिन आगाज कर दिन कार्यक्रम रहा जो कि

इस गीता के आगाज करते हैं और गीता जहन है एक नौजवान इंसान की असो बुढ़ापे री और अगर सर बंदा हा बुढ़ापे री और की असो बढ़दा हा शतों और तेने फिर ना रक्त रिंद है ना वक्त रिंद है ना फिर बात ना पूछदा कोई हो। ताऊँ अक्सर बोलूँ हाँ कि जो घर है सियाने हिन माँ बाप हिन दादा दादी हिन नाना नानी हिन है ना जितने भी बुजुर्ग तुंदे घर है कोई भी बुजुर्ग है बेशक तुंदे घर है तुंदे बेड़े मंज तुंदे अखे बखे सेरा हाल चाल किया सो जरूर पूछू करे शोतों सेरी सिख संभाल किया सो जरूर ले करा मोस्ट इंपॉर्टेंट हा। बरा लाइए जी आगाज कर लेंदे ना है कार्यक्रम रहा इस गीता सोगी बनी रहा जुड़ी रहा आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रही।

शो तो बहुत ही प्यारे दे गीत तो है सभी हूँ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला मंच और आऊँ सचिन कपूर है इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा जो कि ऐसा होस्ट करूँ करता हाँ बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है अकमो के फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा तहे दिल तो स्वागत करनो हाँ हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ अपने इस कार्यक्रम मंच हिंदी अपनी गप्पा मंच फेसबुक रे माध्यम तो है फिर लाइव बुझेगन शो तो इस पूरे कार्यक्रम जो होने वास्ते अगर तो है लोकल हिंद 91.2 FM फ्रिक्वेंसी की सो ट्यून करा शो तो और अगर तो है भारत हूँ इस कार्यक्रम जो समय फेसबुक रे माध्यम तो हेरो कर दे हिंद तो है प्ले स्टोर में खींच करे गुंजन इंडिया रेडियो की ऐसा ज़रूर लिखा या गूगल में खींच करे तो है गुंजन रेडियो लाइव लिखी लेता बे कि ऐसो लाइव कार्यक्रम चले पहना हाशो तो ये जी कुछ एक खास जानकारी के अनुसार है तो सो ज़रूर शेयर कर दें साझा कर दें लेकर ही चलता है तू सभी श्रोता जो इस खास जानकारी रही और श्रोता डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद वाजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि टांडा अभी आऊँ गल करूँ करता हाँ शो तो अस्पताल टांडा में आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना रे तहत करीब 85 करोड़ रुपया पेंडेंसी सामने इने थों कि ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने भी चिंता के ऐसा बढ़ गए हाँ शो तो जानकारी रे अनुसार आऊँ गल करूँ तो इति में करीब 40 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत तथा 45 करोड़ रुपया हिम केयर योजना रे तहत की ऐसा फंस रहा भुगतान कै फंस रहा ये पह फंस रहा शो तो भुगतान अटकने रहा असर अस्पताल रे समाना और मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाने वाले बैंडरा पर भी किया सो प्यो हाश होता हूँ दसो करदा इनकी लंबे समय थो पिछले पेमेंट ना भूने रे कारण किया सो कुछ बैंडर नवा सामान देने थो किया सो आनाकानी करू करदे हैं बैंडर बलना ये आश होता हूँ कि पहले पिछली बकाया राशि व भुगतान किया सो करी दीन तत्थों बाद नवा सामान रे आपूर्ति भी किया सो असू करी देनी है यानी कि नवा सामान किया सो भी असू ले देना हाँ लेकिन पहले पिछली पेमेंट किया सो क्लियर बुझ गया अच्छा प्रदेश रे दूजे बड़े टांडा अस्पताल में शो तो हिमाचल प्रदेश है दूजा मोटा टांडा अस्पताल हाँ दूए नंबर पर इंदा है इड़ी 45 विधानसभा 6 जिला चंबा मंडी ऊना हमीरपुर कुल्लू और 16 लाख तो ज़्यादा आबादी वाला इंदा अपना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिला कांगड़ा रे मरीज उपचार वास्ते पुजू करते हैं इन छोतों ऐसे में अस्पताल में दवाई मेडिकल उपकरण और अन्य आवश्यक सामान री सप्लाई प्रभावित भुने भी स्थिति में किया सो मरीज और त्यारे सोगे के इच्छुक करते हैं अटेंडेंट सो काफ़ी परेशानी रहा सामना किया तिन्यो झेलना पे उगड़ता हा शो तो इवन की बहुत सारी रील्स कैंसो भी वायरल भुईन तो है रूप होना कि कतकी माँ ग्लव्स नीन कोई रील पाओ करता कि ग्लव्स नीन कोई व्हील पाओ करता कि सरिंजा नीन कोई क्या है ना तो कारण ए आ सो रील के पाओ कर देने सो पूरा अह तुसु दसीता कि चिट्ठा ए भाई तेर तेर सो रीला पे कर दी क्योंकि बैंडर की सो नवा सामान ना दिचो करता है कजो की तैयारी पुरानी पेमेंट है क्या ना सो सरकार है पूरी ना कर रही हैं मरीजा रहे बलना शतों की सरकार और सरकार जो आयुष्मान और हिम केयर री राशि जो जल्द भुगतान किया सो करना चाहिए था ताकि अस्पताल में सामान्य स्थिति बनी अच्छा नियमित आपूर्ति की सो बनी रहे और मरीजा जो उपचार वास्ते किया सो सब सामान मुड़ेगा अच्छा और किसी भी तरीके री कोई भी दिक्कत किया सो मरीजा जो ना आइया आयुष्मान भारत और हिम केयर री अगर बुचगंदा तेरा सीधा असर किया शो तो अब टांडा मेडिकल कॉलेज वे मवीजा पर प्रयोग करता और इलाज में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी सामान भी किया सो मरीजा जो भारत हों खरीदना प्यो करता हा शो तो करोड़ों रुपये री पेंडेंसी वे चलते छोटे छोटे मेडिकल उपकरण रहसोगे ग्लब्स सुई सरिंज और अन्य आवश्यक सामग्री भी किया सो मरीजा जो भारत हों ही खरीदना किया सो प्यो कर दी हा शो तो अस्पताल में दवाई भी किया सो भारी कमी किया सो दसो करते हैं इन शोतों करीब 80% दवाई किया सो भारत हों लेना प्यो कर दी हिन चति थो मरीज के इन शोतों सो काफ़ी परेशान है इवन कि धर्मशाला अस्पताल में भी किया सो नॉर्मल अक शुगररी दवा किया सो बिना मुड़ो कर दिया टांडा था फिर चलो दुआ हिमाचल रहा मोटा अस्पताल चलिंदा ही पता ना क्या क्या मुखी कुछ रहा शोतों जी कि मैं दसो कि दवाई सरिंजा मुखी गुछूरी है ना ग्लव्स मुखी गुछूरे और छोटी मोटी दवाइयाँ कैंसोईड़ी भी मुखी गुछूरी हिंसो तो कई जरूर

0: दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं इस समय, मरीज और तमीदार जो अटेंडेंट तीनों बार हथों खरीदना पे उगरदी दवाई और सब सामान अस्पताल जो मेडिकल सामान उपलब्ध करवाने वाले वेंडर वालू कर देन किन्दी पिछली पेमेंट की सो लंबे समय थों फंस रहा वेंडर रहे बलना शोतों की जहने तक पुरानी पेमेंट इन क्लियर ना बंदे तहने तक रसू नवा सामान किया सो ना दीना नवा सामान सामान ने भी सप्लाई किया सो नियमित रूप थों करना मुश्किल है किया सुना करनी है शतों ठेरा सीधा असर किया सो अस्पताल में रोजमर्रा रहे उपचार में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सामग्री री उपलब्धता पर किया सो प्यो कर दिया और असुतुसु पर भी किया सो प्यो कर दिया तैबेले हेरे लिया जी है सौभाग्यशाली मनन अपने आप जो कि दुर्भाग्यशाली मनन क्या है वोट दीना गंदा है सरकार आए है बनंदन अपने नुमाइंदे है चुनदेन तथों बाद किया सो अगर इन्या छोटी छोटी चीज़ा पर जहाँ पेमेंट आ रुकी गंदी और फिर वेंडर ये सब चीज़ा के अनसो बुचू कर दी ना तो आम इंसान की सो कर अच्छा आम इंसान कुछ ना बली सकता कुछ ना करी सकता है तो दुई तो राय इन द इन्फ्लुएंसर थी है जिन्हें ये वीडियो पाई थे सो तो ताकि सो थोड़ा करे बुझ सकता कि जागरूक भून लेकिन इड़ी वेंडर की सो सीधा क्लियर गल बली थी सो तो कि सीधा क्लियर कट गल बोले कि इनकी पेमेंट क्लियर बोले सरकार इनकी पेमेंट क्लियर कर ले तसु सामान भेजना अन्यथा तुसु सब सामान की सो भारत हों लेना पैना है। ये विशेष जानकारी तुसु जो आरजे सचिन कपूर देते हैं श्रोतों और रेडी गुंजन धर्मशाला मंच तो है विशेष जानकारी जो किया सो हुणु करते हैं लेके चलते तू सब भी श्रोता जो थोड़ा करिए और हगो और तो सब श्रोता जरूर रसो के जुड़ी सकते हैं 7088870 पर इन द श्रोता गणना सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार सर जी
0: नमस्कार जी नमस्कार हाँ जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी था बोल रहे हैं
1: सर गमरू बोल रहा हूँ गमरू ना
0: अच्छा सर थोड़ी देर तुंदी आवाज की सो हसू क्लियर चली लेता मजे चली ना हेलो
1: हेलो सर जी हाँ जी
0: अबे चुंदी जी
1: आवाज नमस्कार सर
0: नमस्कार
1: जी हाँ जी नमस्कार सर नमस्कार सर
0: नमस्कार जी
1: सर क्या हाल चाल है सर
0: बहुत बढ़िया जी है बिल्कुल ठीक ने
1: हाँ जी सर
0: तो है दसो जी तो है गमरू थों बल्लू गर्दन है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: क्या ना जी तुंदा
1: मेरा नाम सुरेश है सर
0: सुरेश
1: हाँ जी
0: सुरेश जी क्या कर दें तो है
1: सर हम चलाना टैक्सी में मैक्लोडगंज ना
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए सुरेश जी ये जानकारी तुसु तक रहे हैं पहुंचाए टांडा वाले जो तो है रूप होने की रील अभी काफी ज्यादा की है सो वायरल भुचु कर दी है ना
1: जी जी सर बड़ा ही बुरा सर हाँ जी
0: क्या आई थी पर क्या समझ रख दें तो है क्या दसना चाहते मतलब क्या
1: गवर्नमेंट तो की मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰੀਲ ਰੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਬਣਾ ਚਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ
0: ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਈ ਮਤਲਬ
0: ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ कुछ दिन पहले बहुत जायज चीज़ अगेन सो वायरल हुई नहीं यानी कि जो टांडा अस्पताल में मरीज गच्छू कर देन है ना
1: और
0: सो जो तीनों हो गया अटेंडेंट सो कुछ नौजवान बुने इन्फ्लुएंसर बुने सो चीज़ें पाऊ कर देन कि एक ग्लव्स ना मुड़ू कर देन सुई ना मुड़ू कर दी दवाई ना मुड़ू कर दी नॉर्मल नॉर्मल है ना
1: सर आप अपनी सोच रहा हूँ तो ये बोलता है कि मतलब इने वाले टाइम अंदर सरकारी काम तो बंद ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो प्राइवेट ठीक है मेरे हिसाब से
0: लेकिन चलिए तुम दे गल ठीक है तो है शायद आ तरफ सोचे करे गल बलेते आ लेकिन अगर सरकारी एरा की अगर प्राइवेट बुचेगा तो फिर जो एम्प्लॉयज ने जो प्राइवेट एम्प्लॉयज ने है तो है जिन है ना और भी अन्य
1: हाँ जी जी सर
0: तीन वास्ते तो थोड़ा मुश्किल रहा दौड़ना चली ना फिर कि हर चीज ही सो इंसान बाहर हथों की
1: ऑपरेशन मतलब हम तो बोलते कि मतलब प्राइवेट जॉब होता बंद है ही करने की, प्राइवेट दौड़ देने दीजिए, मतलब अपनी फैमिली बारे तो सोचना है पहले। आजकल टाइम में बंदा फैमिली बारे सोचता, मतलब पहले पूरे बारे में तो घाटी सोचता कि मतलब बंदा ये सोचता कि हाँ जी
0: जी जी
1: जी अपने देश सोचे कि अगर गवर्नमेंट काम होते फिर अच्छे करने बोना तो बुआ ही ना,
0: फिर तो सरकार बनना ही बंद हो चुका
1: बंद ही। हाँ जी हाँ, बोलने मतलब सर सही है ना सर जी,
0: है ना।
1: अगर मतलब जनता जो कोई मतलब चीज प्रोवाइड ही ना होनी सर, मतलब कोई चीज मिलनी नहीं है, मतलब अभी चीनी ले लिया सर तो है
0: जी जी,
1: चीनी इस टाइम 70-70 भी किलो बिक रही है सर।
0: बिल्कुल,
1: पर लोग कैसे चीज छंडनी है, मतलब पीना चाह पीने से पीनी पीने सर
0: पीनी पीनी है।
1: आओ तो बोलते कि इन्हें बार टाइम तो कम सा प्राइवेट ही कर देना, आओ तो ही बोलता अपने सोचते ही है सर। अभी कल की अब सरकार सरकार तो मतलब विश्वास उठी शुरू सर इस टाइम में। हाँ जी, चाहे सरकार जो भी हुआ
0: जो भी हुआ
1: जी जी सर, मतलब कमाना आपको ही पैना सर, सरकार तो उम्मीद छड़ी तुरे मतलब से अपनी तरफ आन जी।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ता तो ने बल्लू कर देन कि प्राइवेट बुने चंदे ने। सर ठीक
1: बोल दे कि गलत तो है, क्या बोलते हैं सर
0: ना, ये तो है बिल्कुल एक तरफ के गल बल्ले, बिल्कुल तुंदे सोच के बड़ी सटीक और सही सोच थे कि प्राइवेट काम बुझगा नहीं थी तो खरा है ना, किसके जान ना गच्छा है ना इंसान चलो करका। अब तिया माँ बुढ़े वास्ते सो बच्चे 2.5 साल रे बच्चे के थे, सो कितने इंपॉर्टेंट बुने हैं जिया रहे बच्चे, सो जान देन कि बच्चे कितने इंपॉर्टेंट बुनते हैं है ना। तो तिया वास्ते जड़ी उपचार वास्ते 1-2 लाख 5 लाख लगे बेगन दा तो सो कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं ना
1: सर, फायदा नहीं ना जे चीज सर। फिर हाँ जी हम तो बोलते कि आज आने वाला टाइम मतलब प्राइवेट कर दे सब चीजा, सरकारी स्कूल स्टूडेंट जेड़े मतलब यार पेरेंट्स वगैरह जेड़े मतलब लग रहे आई पोस्ट बोल रहे खुद टीचर भी गए सब अपने बच्चे जो अंदर पाओ गंदे प्राइवेट स्कूल अंदर बड़ी स्कूल अंदर मतलब एजुकेशन मतलब बड़ी
0: एग्जांपल था। यही दीता तो है कि अपने जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सो अपू गवर्नमेंट स्कूल ना पढ़ाओ कर दे कजो कजो की इंदी सरकार है कहने, सो कोई भी सरकार बो है ना, आहे कस की अकी सरकार और टारगेट ना करो कर दे सरकार कोई भी बो कजो की तस हिसाब री फैसिलिटी नहीं ना स्कूल अंदर, तस हिसाब रे एनवायरमेंट नहीं है स्कूल अंदर। असो तुस वो बोलने की हाँ सरकारी स्कूल है पढ़ाता, असो तुस बिना पढ़ाने का जो कि सो एनवायरमेंट ही नहीं
1: है ना, बिल्कुल
0: सो एनवायरमेंट ही ना क्रिएट कर रहा जो प्राइवेट स्कूल वाले एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा का डेकोरम क्रिएट कर रहा, तस हिसाब रा चीजा बुना छिंदे ताई बच्चा के सो सरकारी स्कूल है सब पाई सकदे है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पीछे ने मुख्यमंत्री बोल रहे कोने बोल रहे याद नहीं मुझे इतने
0: जी,
1: पर तिया बल्लू के मतलब जेड़े भी मतलब स्कूल लगा सीबीएसई बोर्ड कर देना सब।
0: हां ने मुख्यमंत्री जी है बोल तो
1: जी सीबीएसई बोर्ड करे दिला सर, पर टीचर ना बोलना सीबीएसई रहे। हाँ हाँ, तो सर हिमाचल अंदर एजुकेशन हाई नहीं है मतलब,
0: बहुत सारे स्कूल मर्ज भी हुए ने लेकिन मर्ज होने रहा मतलब ये भी है कि तस हिसाब रे एजुकेशन भी चेंदे है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, अने सचिन सर तुंदी पहली गल तुंदी आवाज बड़ी अच्छी सर।
0: थैंक यू जी,
1: तुंदी आवाज तो है मोहित उन्दे दान की फोन करता है ना, खास कर करता ना।
0: थैंक यू जी, थैंक यू अपना भाईचारा जी,
1: कल मेरा कल मेरा मुंडा भी तुझे फोन कर शायद तुझे याद होने हैं।
0: अच्छा
1: खुलेड़ा हूँ कर रहा हूँ दिन फोन।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी सर, से मेरा मुंडा हाँ जी।
0: अच्छा क्या बात है, थैंक यू
1: मतलब फिर तुझे बड़ा पसंद करता लाइक कर दो सर, बोलता कि सचिन जी सर जी की आवाज बड़ी अच्छी है।
0: थैंक यू जी, तुंदा प्यार है तुंदा भाईचारा जी।
1: नहीं नहीं सर, आज ही तुझे चाहे चले तुंदी दा चांद फोन करता है मिले सचिन भाई को कॉल करता है
0: जी। बिल्कुल जी, आऊं तुंदा अपना सचिन कपूर और तुंदा अपना गादा कार्यक्रम है जी ये था ना, और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने मनु तक के नसो इस प्रकार की जानकारी पूजना और इन दमनु के अनसो अवेयर बुन है ना।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी। हां जी जनाब, कौन दिन गीत होना पसंद कर ले?
1: गान तो होना है सर शांत बाज बाजरा, घर वाला घर है, घर वाला घर है बजंदा डोले नगाड़ा।
0: क्या बात
1: है, क्या गाना है सर
0: तो है ना, तो गीत भी गंदे ना।
1: हाँ जी सर, तो आवाज नहीं लगे सर मेरी,
0: मैं बहुत प्यारी लगे, तो प्लीज इस गीता जो फिर कंटिन्यू करा है फेसबुक रे माध्यम तो भी लाइव इन है अपनी साउंड के सो फुल करीन देन स्टूडियो रे ताकि
1: बाकी सर थोड़े शौक है गाने दे थोड़े गाइड दे ना जी।
0: बिल्कुल बड़ा अच्छा गा वो तो है, प्लीज तो है गुनगुना।
1: ओके जी जी जी, ते होना चाहंदे सर एक बार फिर
0: जी, बिल्कुल होना चाहंदे
1: जी, तरीका बनांदे तुसी ना
0: जी।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज़। और इस आवाज़ जो बिल्कुल बरकरार रखा, अपना शौक की सोना मारना चाहिए जनाब, कभी भी ना अपने शौक जो
0: जी
1: की
0: जी सर,
1: जरूर
0: बिल्कुल ऐसा।
1: बरकरार रखा।
0: हाँ जी, हाँ जी सर, जी
1: ठीक है
0: जी,
1: जी तुंदी फरमाई
0: चलो सर,
1: जरूर
0: ठीक
1: पूरी
0: है,
1: कर ले।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, जल्द
1: धन्यवाद
0: मिलेंगे सर, ठीक है, थैंक यू।
1: धन्यवाद। शदों ये जी एंड फरमाइश पूरी कर दें तो ये सब बन रहे ने समय आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे इन दे अगले श्रोता भी कनेक्टेड इन।
2: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
2: हेलो
1: हेलो हेलो नमस्ते जी, नमस्ते।
2: हेलो
1: हेलो जी, मेरी आवाज छुंदिया।
2: हेलो
1: हाँ जी, हेलो
2: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, मेरी आवाज़ छुंदे आ।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन?
2: आऊं लंदी कने पे आड़े
1: कड़ी थों
2: कने पे आड़े आऊं
1: कंड बगियाड़ा। वाओ, बड़ी अच्छी जगह। अच्छा जी, क्या ना तुंदा और कस स्कूल पर दिन तो है?
2: मेरा नाम कंडिया।
1: अच्छा, कौन दिन गीत होना पसंद कर ले तो है कार्यक्रम में जी?
2: हनुमान जी।
1: अच्छा,
2: बड़ी मंज तेरी हो।
1: क्या बात है, बड़ी मंज तेरी हो, लंका रे राजा कोई बांदरू आया हो। अच्छा, ये प्रोग्राम कदे लगदा दसो?
2: अच्छा लगता, तुम्हारी आवाज अच्छी है।
1: अच्छा, आवाज अच्छी लगती, प्रोग्राम भी अच्छा लगता।
2: हाँ जी।
1: चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। और तुम दी फरमाइश है जरूर पूरा कर ले। स्कूल आता हूँ, कितने बजे पहुंचे तो है घर है?
2: हाँ जी।
1: स्कूल आता हूँ, कितने बजे पहुंचे मेलो घर है? अच्छा चलिए ठीक है जी, तुम दी फरमाइश है जरूर पूरी कर ले, है ना?
2: हाँ जी।
1: ठीक है जी, नमस्ते। अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हिंद श्रोताओं तो सब बन रहे समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगे। नमस्ते जी।
2: हेलो।
1: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल लूं देन और कड़ी थों बोल लूं देन?
2: आम कृति बल्लू भी यार नरवाने हूं।
1: कृति जी बल्लू कर देन नरवाने थों। नरवाना एक्जेक्टली कड़ियों बल्लुंदन जी? कस्बा।
2: कस्बा
1: कस्बे तो। अच्छा कृति जी, कौन दिन क्लास में पढ़ दिन का स्कूल पढ़ दिन तो है?
2: एडी पढ़ देना एक बार में कुछ कस्बे नरवाना।
1: अच्छा कौन दिन क्लास है तुंदी
2: जी?
1: क्लास कौन दिन है तुंदी?
2: एट।
1: अच्छा ता प्रीति जी, तो है सोच रहे हो कि तू तू आफ्टर टेंथ किया सो क्या स्ट्रीम रखनी है प्लस वन प्लस टू में?
2: जी
1: मेरी आवाज क्लियर इच हुंदी आ?
2: जी
1: मैं बोलूं तू आफ्टर टेंथ क्या रखना, क्या स्ट्रीम रखनी है प्लस वन में प्लस टू में? मेडिकल। ओके, बड़ी अच्छी गल है, मेडिकल वास्ते तो बड़ा पढ़ना पैंदा। ये हवा में तीर मारो कि सच्ची पढ़ ले ले
2: जी?
1: हेरा जी, अगर तुसु वाकई में मेडिकल रखना तो तुसु कम से कम भी आई थिंक त्राई थो 4 घंटे की आ सो स्टडी करना पैने। ये भी हम घट दस सुगर दा स्टूडेंट लाइफ में त्राई थो 4 घंटा अगर तो है पढ़ी लैन ना सो बड़े बरे। चलिए कौन दिन गीत होना पसंद कर ले? अच्छा ठीक है जी, जरूर होना ले। धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद कॉल करने वास्ते। श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो सेट में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं श्रोतों और करखनगर का धर्मशाला मंच धर्मशाला भी जो सड़कन तड़ी खड्डे भरना की है सो शुरू पूछ गए। मुबारक उन सब भी जो धर्मशाला री मुख्य सड़क पर पिछले कई सप्ताह थों बड़े बड़े गड्ढे के न सो बन रहे थे शतों जिया रे चल दे मार्ग रे उपयोग करने वाले वाहन चालक जो परेशानी व सामना किए सो करना पे करता तो निगम री और थों सोमवार जो सड़क वे क्षतिग्रस्त हिस्से पर किए सो पैच वर्क करवाई करे मरम्मत कार्य किया सो करो हा शो पर्यटन विभाग कार्यालय और फायर ब्रिगेड स्टेशन रे आसपास सड़क पर जो खड्डे थे जिया रिया खबर भी लाई थी शतों सो क्षतिग्रस्त थी क्षतिग्रस्त हिस्से वे कारण किए सो वाहन चालक का वाहन चालक जो तीनों विशेषकर दो पहिया वाहन रे वास्ते किए सो इस सड़क रहे भाग खतरे थो भरुरत हो और श्रोतों खबर लाने थो बाद के सो तुरंत असर हुआ है और तुरंत सो पैच वर्क किया फायर ब्रिगेड रहे ऑफिस रहे सामने किया सो पैच वर्क पूरा भी हुआ है श्रोतों दसना चाहता है श्रोतों करीब साल भर पहले स्मार्ट सिटी लिमिटेड री और थो किया सो रिटेरिंग के गाने थे और आख वर्ष भीतर ही सड़क वे की असो कई हिस्से में गड्ढे किन से उभरे आयुष होता और सड़क रे सत्ता की असो जगह जगह थो उखड़ी गई अब ऐसो पैच वर्क कंप्लीट हुआ है और अब तुसू लेकर चलते हैं श्रोतों काफ़ी ज़्यादा फरमाइशा ही नसूल है फरमाइश रहा दौर शुरू करते हैं बने रहे जुड़े रहे आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे

0: अच्छा विहान जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले
1: कोई भी सुना दो।
0: ठीक है रिहान जी धन्यवाद। शोधों ही कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रहा और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है। आइए कार्यक्रम मंच आगो बढ़ देन और अगली जानकारी होगी तो सो रूबरू करवा देन। कांगड़ा में सुकन्या योजना रबड़ उकरे स्वतंत्र आय साल में खुले 16,500 खाते। जी बिल्कुल बेटी वे सुरक्षित और उज्जवल भविष्य भी चिंता। अब कांगड़ा रहे अभिभावक जो बचत रहे वास्ते के सो प्रेरित करू कर दिया शो तुम केंद्र सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रहे तहत के सो संचालित सुकन्या समृद्धि योजना जो जिला में लगातार बेहतर प्रतिसाद मिलो कर दहा शो तुम। धर्मशाला और देरा डाक मंडला में पिछले त्राई साल वे दौरान के सो 16,350 नोए खाते के इन सो खुले इन शो तुम आंकड़े दसू कर देन की बेटी भी पढ़ाई और भविष्य रे वास्ते छोटी थी छोटी उम्र तो ही किया सो आर्थिक तैयारी जो लेकर ही अभिभावक वह भरोसा किया सो इस योजना में काफ़ी ज़्यादा हाश हो तो। धर्मशाला मंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,615 जबकि 2025-26 में 23,670 माफ़ करा 696 नोए खाते के अनशोतों सो खुले हैं। ता कार्यक्रम मंच है तो है सब बन रहे ना आरजे सचिन कपूर सो गेंदी अपनी गप्पा हूँ करते हैं लेके चलते हैं तो सो और फरमाइश और पूरा

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव फोन कर देना अपने आर से सचिन कपूर सो की बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन आगमो के फेरे सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। आइए जी कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदन और अगली जानकारी होगी तुसो रूबरू करवंदे हैं। सितंबर रा पहला सप्ताह किसान रे वास्ते किया सो खेता हारा मंच मतलब नई फसल री तैयारी किया सो तैयारी रा समय मतलब साधारण शब्दों में बलूँ श्रोतों ता सितंबर रा पहला हफ्ता गया श्रोतों सो किसान वास्ते गया सो तैयारी रा समय हाँ और समय लेकर या हा माऊँ दसना चाहता श्रोतों मानसून री बरखा तो बाद अब जिला कांगड़ा में किसान हिता री सर्दी री किया सो सब्जी भी बजाई और रुपाई किया सो करना लगन। मैदानी क्षेत्र थों लेकर मध्यम ऊंचाई वाले इलाके तक किया सो इस समय खेतों में सही फसल रहा चयन किया सो कर किसान आगामी महीने में बेहतर आमदनी भी नींव रखना चले हैं। छोतों कृषि विशेषज्ञ वे अनुसार सितंबर माह समय पर बुआई बुचगछा समय पर सब्जी लगेगा अंत सब्जी बाजार में के सो सामान्य फसल तो पहले के सो पुजी गंदी हिन जब तो अच्छे दाम के सो मिलने भी संभावना रहती है। शोतों कृषि विशेषज्ञ के अनुसार मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र माह सितंबर रे दौरान के सो मटर री बुझाई कर सकते हैं पलम है ना और भी कई चीज़ें री बुझाई के सो कर सकते हैं। शोतों कार्यक्रम अपनी गप्पा हूँ कर दें हिंदी अपनी गप्पा आरजे सचिन कपूर सो गया ये कार्यक्रम जो है गुबरंदन और फरमाइश दौर के सो पूरा करते हैं। छोतों

0: क्या है?
1: क्या ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।

0: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
1: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
0: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
1: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
2: अबे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
2: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
4: रुको, सोचो और एक्शन लो।

की दूर। उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत।

प्रकृति के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

ट्यूनिंग है आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलिए फिर आगे बढ़े एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज गए हैं श्रोताओं, और आप सभी जानते हैं ये जो समय है ये रहता है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला रोज़ाना की तरह आज फिर से लेकर आ गए हैं हम, और आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम रोज़ाना हमारे जितने भी आरजीज हैं वो सभी लेकर आते हैं, और आज का ये अंक जो है श्रोताओं आप तक लेकर आई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में, और जो श्रोता नहीं आए हैं उनका हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन्हें सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं, और ज़रूर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़ चुके होंगे। वैसे तो हमारे श्रोता पूरा दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हर कार्यक्रम को बखूबी सुनते भी हैं, और आपका साथ और आपका जो प्यार है ये हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम का समय, लेकिन फिर भी हम आपको ज़रूर बताते हैं कि इस कार्यक्रम का समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और ये 2 घंटे का सफ़र श्रोताओं हम तय करते हैं आपके साथ, बातों के साथ आपका करवाते हैं मनोरंजन भी, और साथ ही आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ भी। और श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप कार्यक्रम को सुन भी सकते हैं, और हमारे फेसबुक लाइव पर

हमें देख भी सकते हैं और साथ साथ सुन भी सकते हैं श्रोताओं। तो जितने भी श्रोता लाइव के साथ भी जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में श्रोताओं, और आपका जो प्यार है, आपके जो सुझाव हैं उनके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहते भी हैं कि आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया कीजिए, अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए। तो कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है श्रोताओं, और साथ ही आप तक पहुंचानी है जानकारियां भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत रोज़ाना की तरह हम आज भी करेंगे एक विचार के साथ, और आज का विचार श्रोताओं हमसे यही कहता है कि हमें अपने काम को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है, सिर्फ हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारी काम के प्रति जो निष्ठा है, वही उस काम को छोटा या बड़ा बनाती है। इसलिए हर काम को प्यार से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, चाहे उसका फल आपको कुछ भी मिले। तो श्रोताओं, इस विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है, और अब देर है तो सिर्फ गीत की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हम लेकर आए हैं श्रोताओं बेटा फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास ने।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ। गीतों की माला श्रोताओं हम लेकर आए हैं, और उसमें से एक एक गाना आपके सामने आपके रेडियो सेट तक ज़रूर भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की जो कहते हैं ना कि कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत करते हैं, और आज 8 सितंबर का दिन है, और आज का दिन आप सभी जानते हैं कि आज आप सभी ने विश्व साक्षरता दिवस मनाया, और इसके बारे में श्रोताओं ज़रूर आपने गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में भी सुना होगा। और वैसे तो सभी श्रोता हमारे जानते हैं विश्व साक्षरता दिवस किस लिए मनाया जाता है, लेकिन फिर भी श्रोताओं कार्यक्रम में हम आज इस विषय पर थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन श्रोताओं, जैसे ही साक्षरता शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, एक बिल्डिंग जो है वो हमें नज़र आती है, और वो बिल्डिंग होती है हमारा विद्यालय। कोई भी विद्यालय ले लीजिए श्रोताओं, उस विद्यालय में जब भी कोई बच्चा एंटर करता है या कोई शिक्षक एंटर करता है तो उसके मन में एक प्रेम का, एक श्रद्धा का भाव ज़रूर आता है, क्योंकि श्रोताओं विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ हमें शिक्षा मिलती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विद्यालय के बाहर भी हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन हाँ, हमारी शुरुआत शिक्षा की जो है वो उस विद्यालय से ही होती है, और उस विद्यालय में जाकर हम बहुत सारा ज्ञान जो है वो लेते हैं। एक विद्यार्थी जब भी अपने विद्यालय में जाता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर आता है, और एक शिक्षक जब भी जाता है तो वो ये सोच कर जाता है कि आज उसे कौन सा पाठ पढ़ाना है और अपने बच्चों को किस काबिल बनाना है। तो साक्षरता दिवस पर आज हम बात करने वाले हैं श्रोताओं, और जब साक्षरता दिवस की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात हम कर रहे हैं, तो एक गीत कह लीजिए या एक प्रार्थना कह लीजिए जो कि मेरे दिमाग में आ रही है, और आप भी जब उसे सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्कूल के वो दिन, स्कूल का वो प्रांगण जो है वो याद आएगा, जब आप प्रेयर करते थे, प्रार्थना सभा में खड़े होते थे और दो हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके वो प्रार्थना किया करते थे। तो विश्व साक्षरता दिवस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम आपको याद दिलवाएंगे आपके स्कूल के वो दिन। तो चलिए याद दिलवाते हैं, और साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि आप भी इस गीत को, इस प्रार्थना को ज़रूर साथ में गुनगुनाइएगा। अंकुश फिल्म से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, और पुष्पा पगधारे और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में आप अभी ये गीत सुनने वाले हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत, और ज़रूर कहीं ना कहीं आपको भी आपका विद्यालय का समय याद आ गया होगा, जब हम भी प्रार्थना सभा में इकट्ठे होते थे और एक लाइन में खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें जो हैं याद आ जाती हैं, जैसे कि प्रार्थना करते समय हम वैसे तो आंखें बंद करके खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी कोशिश करते थे देखने की कि साथ वाला क्या कर रहा है या बाहर क्या हो रहा है। तो ये जो बच्चों की आदतें कह लीजिए या बच्चों की अटखेलियाँ होती हैं ना, ये आज भी होती हैं और उस समय भी हुआ करती थी। तो बचपना तो खैर बचपना ही है, और बचपने वाले जो दिन हैं या वो जो पल हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इन गीतों के ज़रिए कहीं ना कहीं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़रूर आपकी भी स्कूल की जो एक याद है वो ताज़ा हो गई होगी, और आगे भी बहुत सारी यादें जो हैं आपकी ताज़ा होने वाली हैं श्रोताओं, क्योंकि ऐसे ही गीत और ऐसी ही बातों के साथ आज हम पहुँचे हैं स्टूडियो में। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, यानी कि आज 8 सितंबर का दिन है, विश्व साक्षरता दिवस हम सभी आज के दिन मनाते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि साक्षर होने का मतलब सिर्फ अपना नाम लिख लेना या किताब पढ़ लेना है? नहीं है श्रोताओं, साक्षरता का असली अर्थ है जानकारी को समझना, सही और गलत में फर्क करना और अपने जीवन के फैसले खुद समझदारी से लेना। तो श्रोताओं, आज के दिन अपने बच्चों से हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में किताब है तो उसे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए मत पढ़िए। किताब आपको सवाल पूछना सिखाती है, नई चीज़ें जानना सिखाती है, और सबसे ज़रूरी अपने सपनों को पहचानना सिखाती है। श्रोताओं, और आजकल के बच्चों की बात अगर हम कहें तो आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो किसी भी बात के पीछे का क्या राज है या इस बात के पीछे क्या लॉजिक है उसे जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। ये चीज़ें हम लोग स्कूल में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं कि बच्चे सवाल पर सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छी बात होती है श्रोताओं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासा रखते हैं कुछ ना कुछ जानने की, कुछ ना कुछ सीखने की, और ऐसे में हमें बच्चों को ज़रूर उनके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, ताकि उनकी जो ये जिज्ञासा है या क्वेश्चन करने की जो आदत है वो कहीं दब ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो साक्षरता दिवस पर हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, और इस बात को आगे भी हम बढ़ाएंगे, आगे भी थोड़ी सी बात और करेंगे इस बारे में। लेकिन जैसे कि आपसे कहा कि साक्षरता दिवस है, तो आपको बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं वो याद आएंगी। स्कूल की हमने आपको याद दिला दी, और अब स्कूल पहुंच गए हैं तो मास्टर जी के पास फिर चलते हैं। तो चलिए, मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, इस गीत को सुनते हैं। किताब फिल्म से ये गीत लिया गया है, शिवांगी और पद्मिनी कोल्हापुर की आवाज़ों में ये गीत है श्रोताओं।

0: बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगर

0: चाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर इस है बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, बी आई पी अटलवेर बनियान, बी आई पी
1: श्रोताओं। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना इस गीत को। श्रोताओं, और ऐसे गीत कई बार हम लोग सुन नहीं पाते हैं या बहुत लंबे अरसे के बाद हमें सुनाई देते हैं तो अच्छे लगते हैं श्रोताओं। और उम्मीद करते हैं आपको भी ये गीत पसंद आया होगा। बच्चों की जो अटखेलियाँ हैं, बच्चों की जो शरारतें हैं या बच्चों के जो बोल हैं, वो इस गीत में बहुत ही प्यारे लग रहे थे और कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर मुस्कान भी आ गई इस गीत को सुनने के बाद। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज विश्व साक्षरता दिवस पर। श्रोताओं, आज आप स्कूल में जो भी सीख रहे हैं, हो सकता है उसका महत्व आपको अभी पूरी तरह समझ ना आए। ये बात हम अपने छोटे बच्चों के साथ, छोटे जो श्रोता हैं हमारे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, उनसे कर रहे हैं। लेकिन यही छोटी छोटी सीख जो है वो आगे चलकर आपको बड़े फैसले लेने में मदद करेगी। तो जब आप किसी फॉर्म को खुद पढ़कर भर पाएंगे, किसी ज़रूरी सूचना को समझ पाएंगे, इंटरनेट पर मिली जानकारी को बिना सोचे समझे सच नहीं मानेंगे और अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब आपको महसूस होगा कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में भी काम आती है। साथ ही श्रोताओं, हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे युवा जो श्रोता हैं, उनसे भी हम ये कहेंगे कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और जानकारी का एक बहुत बड़ा संसार है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जानकारी होना और शिक्षित होना दोनों एक बात नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई खबर दिखाई दी तो उसे तुरंत आगे बढ़ा देना समझदारी नहीं है। किसी वीडियो में कुछ कहा गया तो उसे सच मान लेना समझदारी नहीं है। पहले पढ़िए, समझिए, सवाल कीजिए और फिर अपनी राय बनाइए। यही आधुनिक साक्षरता है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं। हम भी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और कई बार कुछ ऐसी खबरें जो सुन लेते हैं और उन्हें सच मान बैठते हैं, उसके पीछे होता कुछ भी नहीं है। और आजकल की बात करें तो आजकल AI का ज़माना जो है वो चला हुआ है और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बनाई जाती हैं जिसे हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सच में ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे AI का हाथ होता है। लेकिन जो हमारे ये कह लीजिए कि बहुत कोमल या बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, वो कई बार उन्हें देखकर उन्हें लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें कोई भी खबर जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बारे में जांच पड़ताल करके ही उस पर विश्वास करना चाहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ और हम बात कर रहे हैं विश्व साक्षरता दिवस पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हुआ है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर वापस लौटेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला में।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बातों के साथ साथ आप तक हम जानकारियां भी पहुंचाते हैं। तो चलिए श्रोताओं, ले लेते हैं एक जानकारी। सर्व साधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि एलटी लाइन में केबल डालने के अंतर्गत दिनांक 10/9/2026 को सुबह 9:30 से शाम को कार्य समाप्ति तक 63 KB लोअर मोहली, 250 KB लोअर मोहली 1 और 400 KB एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मस्जिद के आसपास तथा मोहली और श्रीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सर्वसाधारण जनता से सहयोग की अपील भी की जाती है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और श्रोताओं, जानकारी के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जैसे कि हम बात कर रहे थे साक्षरता दिवस पर और बच्चों की हम बात कर रहे थे, बच्चों में बहुत एक आदत होती है क्वेश्चंस पूछने की, सवाल पूछने की, और कई बार शिक्षक भी कहते हैं कि आप हमसे पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मायूस से बैठे रहते हैं, कुछ ज़्यादा पूछने की उनमें लालसा नहीं होती या वो दो डरे सहमे से रहते हैं। तो उनसे, उन बच्चों के साथ हम यही कहेंगे कि ज़रूर अपना जो मेल मिलाप है वो ज़्यादा कीजिए, ताकि वो बच्चा आपके साथ खुलकर बात कर सके और अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपने सवाल जो है वो आपके समक्ष रख सके। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं। चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और कमल बरोट और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में नृत्य की फिल्म का ये गीत।

0: जी बिल्कुल, मास्टर जी कह रहे हैं अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल। लेकिन वो बच्चे ही क्या जो सवाल ना करें, और वो शिक्षक ही क्या जो जवाब ना दे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ इस समय आप जुड़े हुए हैं, और कार्यक्रम में ऐसे ऐसे गीत हम लेकर आए हैं। अब ये तो नहीं जानते कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पसंद श्रोताओं देखिए सबकी अपनी अपनी होती है। कुछ लोगों को किसी तरह के गीत पसंद आते हैं, किसी को किसी तरह के गीत पसंद आते हैं। लेकिन हमारी एक कोशिश रहती है कि जो गीत अनछुए से रह जाते हैं, किसी कोने में पड़े रह जाते हैं और हमारे कानों पर नहीं पहुंचते हैं, किसी बहाने से हम उन गीतों को आपके सामने, आपके समक्ष कार्यक्रम में लेकर आएँ। और श्रोताओं, तो इन गीतों को अब आप सुन चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब आपको सुनना है प्यारा सा कोई और गीत। तो चलिए, आप लोगों को हम बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाएंगे। वक्त की दीवार फिल्म से ये गीत लेकर आए हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।
1: और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। तो इस साल किस किस का इरादा है शादी करने का? श्रोताओं, अगर आप में से भी हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, मैसेज लिखिएगा कि किस किस का इरादा है इस साल शादी का, और अगर है तो ज़रूर हमें भी इन्वाइट कीजिएगा श्रोताओं, और हम ज़रूर आएंगे। देखिए, आप कहेंगे कि हम तो बेशर्मों की तरह खुद ही बोलने लग पड़े, लेकिन भाई अब आपके साथ रिश्ता हमारा जो है वो है, मतलब और रिश्तों से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारे श्रोता हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनके साथ एक सच में अच्छा रिश्ता बन जाता है। बहुत सारे श्रोता हमारे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और साथ ही हमें फेसबुक लाइव पर भी देखते हैं और हमें अपनी फीडबैक देते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। इंदु जी ने भी, उन्हें आज जो सुनाए जा रहे हैं गीत वो अच्छे लग रहे हैं। तो इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी और अपनी फीडबैक देने के लिए भी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बातें तो बहुत सारी है, लेकिन बातों के साथ साथ जानकारियाँ भी आप तक पहुँचानी है, कहीं ऐसा ना हो कि बातों बातों में जानकारियाँ निकल जाएँ। तो चलिए लेते हैं एक और जानकारी। विद्युत उपमंडल 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख रखाव के कार्य के चलते 10 सितंबर को डीटीआर 250 केवीए मस्तपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मस्तपुर, इच्छी, कंद्रेहड़, अप्पर चैतड़ू और अन्य साथ लगते क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाधित रहेगी। तो श्रोताओं, आजकल आप सोच रहे होंगे कि ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां आप तक बहुत सारी आ रही हैं और बिजली के कट लग रहे हैं, लेकिन श्रोताओं देखिए, हमारे लिए ही ये काम किए जाते हैं और इन काम को करने वाले सच में बहुत मेहनत करते हैं और उनकी ये कह सकते हैं कि जान भी दांव पर लगी होती है। इसलिए अगर हमें एक दिन के लिए लाइट नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है, तो हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए वो भी तो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोल पर चढ़े होंगे और अपने परिवार के लिए, अपने लिए कमा भी रहे हैं, हमारे लिए भी वो हमारे ही काम कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ऐसी जानकारियाँ जब हमें मिलती हैं तो हमारे पास जो है वो उनके लिए एक धन्यवाद का एक छोटा सा शब्द भी होना चाहिए। तो कार्यक्रम में जानकारियाँ और भी हैं, लेकिन हम आपको धीरे धीरे उन जानकारियों को पहुँचाएँगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम में हिम्मत वाला फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, साक्षरता दिवस पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक अक्षर किसी की शुरुआत हो सकता है, एक किताब किसी की सोच बदल सकती है और एक शिक्षित इंसान पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। और आप सभी को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे समय हो जाएगा समाचारों का। तो समाचारों से पहले चलते हैं, एक और गीत ले लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इसे। लता मंगेशकर की आवाज़ में दो कलियां फिल्म का ये गीत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.5

0: जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भूमिका है, इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही समाचारों के बाद एक बार फिर से सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़े होंगे। हो सकता है आप में से कुछ श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं आप सभी को अब कार्यक्रम में आगे लिए चलते हैं और पहले सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत और उसके बाद हम आपके साथ करेंगे और भी बातें। तो लीजिए चलिए सुनते हैं जाने तमन्ना फिल्म का ये गीत। माफ़ कीजिएगा, जाने तमन्ना फिल्म का ही गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। मुझे लगा कि शायद मैंने कहीं फिल्म का नाम गलत ना बता दिया हो, लेकिन बिल्कुल सही बताया है श्रोताओं। और अब आप सुनने जा रहे हैं जाने तमन्ना फिल्म का ये गीत।

श्रोता, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना रेडियो गुंजन धर्मशाला पर कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ के साथ हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, हमारे श्रोता जो हैं वो बहुत दूर दूर से हमारे साथ जुड़े होते हैं, धर्मशाला से ही नहीं बाहर से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और जब हमें कहीं मिल जाते हैं और जान पहचान हो जाती है। खैर, अब तो कहते हैं कि जब तक हम आवाज़ को ही सुन पाते हैं तब तक हमें पता नहीं होता कि कौन है, लेकिन जब से लाइव हम आने लगे हैं तब से हमें लोग पहचानने लगे हैं और कई श्रोता ऐसे होते हैं जो हमें देखकर पहचान जाते हैं और हमसे बात करते हैं। अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमसे मिलते हैं। खैर, मिलें या ना मिलें, लेकिन हमारा ये रिश्ता रेडियो के माध्यम से इसी तरह से बना रहे, यही कामना करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और। तो आपसे बात यही करनी है श्रोताओं की, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की असली पहचान क्या होती है? उसका पद उसकी पहचान होती है, उसकी कमाई होती है, या उसका पहनावा, या फिर उसका व्यवहार? तो श्रोताओं, मेरे हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी पहचान है वह अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है, क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा, उस काम को हम करते किस तरह से हैं वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम अपने काम को सिर्फ और सिर्फ काम सोचकर ही करते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं डालते हैं। अगर हम उस काम को काम ना समझकर अपना कर्तव्य समझें या उसमें अपनी मेहनत भी करें तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो श्रोताओं, काम करने का तरीका इंसान को बड़ा बनाता है, चाहे वो कोई शिक्षक हो, डॉक्टर हो, किसान हो, दुकानदार हो, या चाहे सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, या फिर डॉक्टर हो या विद्यार्थी हो। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है और जब हम अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी दिखावे के पूरी लगन से और सच्चाई से निभाते हैं तो वही कहलाता है काम के प्रति ईमानदारी। तो श्रोताओं, काम के प्रति ईमानदारी कितनी की होनी चाहिए और कितनी की अब हमें दिखती है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करके देखिए, कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी आपको शाबाशी देगी या आपको अच्छा लगेगा कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, चाहे उसके लिए हमें कोई इनाम मिले ना मिले, कोई अच्छी फीडबैक मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, हमारा जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें बता देती है कि आज हमने काम अच्छे से किया, ईमानदारी से किया है या नहीं किया है। तो भाई, हम ज़रूर इस पर और भी बात करना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अब फिर से हम लेंगे पहले एक और प्यारा सा गीत। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस एक और गीत के साथ, जिसे हम लेकर आए हैं सनम फिल्म से। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में ये गीत आप सभी तक पहुंचा रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे, जानकारियों की ओर रुख करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण नदी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मलबा, बोल्डर, पत्थर और रेत जमा हो जाती है। इससे नदियों की जल वहन क्षमता जो है प्रभावित होने के साथ साथ मानव बस्तियों, सड़कों, पुलों, वनों तथा अन्य महत्वपूर्ण अधोसंरचना के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं समयबद्ध ड्रेजिंग आवश्यक है। साथ ही श्रोताओं, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वन सलाहकार समिति के निर्णयों एवं सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ड्रेजिंग से संबंधित प्रस्तावों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित हो सके। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाएंगे। अजूबा इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना गीत, और इस गीत के साथ अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से लौटेंगे और आपको सुनवाएंगे प्रेरणादायक कहानी। तो श्रोताओं, कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी जानते हैं कि जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गीत और साथ ही आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ भी और सुनाते हैं प्रेरणादायक कहानी भी। श्रोताओं, कहानियाँ जो हैं वो अब के समय में उनका रूप बदल गया है, लेकिन कहानियों के प्रति हमारा लगाव, हमारा प्रेम आज भी वही है। चाहे दादा दादी के मुंह से सुनी हुई कहानियाँ हों, चाहे हम कहीं सुन लें, कहीं पढ़ लें, लेकिन वो कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींच कर ले जाती हैं और हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी श्रोताओं कार्यक्रम में आज भी हम लेकर आए हैं। तो श्रोताओं, आज की जो कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है, राम और श्याम। श्रोता, ये दो दोस्त थे और रोज़ाना अपने घर के लिए गुजारे के लायक लकड़ियां जंगल से काटते थे और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा आता था उससे अपना घर चलाते थे। राम और श्याम दोनों साथ में ही जाते थे और राम और श्याम जब एक दिन जंगल में गए और उन्होंने लकड़ियां काटी, लेकिन कई दिनों से जो श्याम था वो देख रहा था कि लकड़ियां तो हम सेम समय पर आकर काटते हैं और शाम को जाते भी हम एक ही समय पर हैं, लेकिन मेरा जो लकड़ियों का गट्ठा है वो राम के गट्ठे से थोड़ा छोटा होता है, हल्का होता है, लेकिन मेहनत भी मैं उतनी ही करता हूँ जितना कि राम करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम को लगा शायद हो सकता है मेरे काम में ही कोई कमी है, मैं मेहनत ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसे लगा नहीं एक बार पूछना तो चाहिए। तो वो राम से सवाल करता है और कहता है कि राम, जब हम आते हैं और एक ही लोहे की बनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते हैं और शाम को जब जाते हैं तब मेरा गट्ठा जो है तुम्हारे गट्ठे से छोटा होता है और तुम बहुत सारा लकड़ियाँ जो है वो काट लेते हो, ऐसा क्यों? तब राम कहता है कि तुम आकर लकड़ियां काटना शुरू कर देते हो और लकड़ियां ही काटने पर तुम्हारा ध्यान होता है, जबकि मैं आने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को किसी पत्थर पर रख कर रगड़ता हूँ और उसकी जो धार है उसे तेज करता हूँ, और आने के बाद भी जब मैं लकड़ियां काटता हूँ और मुझे कहीं लगता है कि मेरी धार में अब थोड़ा सा कमी आ गई है, उसकी धार जो है वो ख़राब हो रही है, तो एक बार फिर से उस धार को तेज़ करता हूँ, और ऐसा करने से क्या होता है कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है लकड़ियों को काटने में और लकड़ियाँ जल्दी कट जाती हैं। तब शाम को समझ में आता है कि काम हम एक ही तरह का करते हैं लेकिन काम करने का तरीका हमारा अलग है। तो श्रोताओं, ये छोटी सी कहानी है लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी सिखाती है कि हमारे में भी कई बार जो स्किल्स होते हैं, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारी कुल्हाड़ी की धार की तरह होता है, इन्हें भी हमें समय समय पर तेज़ करते रहना चाहिए। कई बार हम मेहनत करते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन कहीं छोटी सी कमी की वजह से हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते जहाँ हम सोचते हैं और दूसरे पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी भी मेहनत में थोड़ी सी कहीं कमी रह जाती है, तो हमें भी अपने जो स्किल्स हैं उनको और अच्छे से डेवलप करना चाहिए और अच्छे से उसकी धार को तेज़ करना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी है श्रोताओं और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है, और उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ हम कार्यक्रम में लेकर आते हैं और आप तक पहुँचाते भी हैं। तो आज की कहानी यही थी श्रोताओं, और इस कहानी के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे एक और गीत। कोयल फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, और कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ें इस गीत में हैं।

0: ट्रैफिक समाचार सुनिए। आज की मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उठाए प्रदेश हित के मुद्दे, ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में रुके विकास को भाजपा की सत्ता में आते ही दी जाएगी रफ्तार। राज्य अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के लगभग 17 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लगाया शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर प्रदेश हित के मुद्दों को उठाया। मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान हिमाचल के बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट व सक्षम दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अधिकांश नदियों का रिवर बेड अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण मलबा, चट्टानों, पत्थर और रेत से भर गया है। इस कारण नदियों की जल वहन की क्षमता कम हो गई है और वो आसपास के क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया ताकि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने इससे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के दौरान बिजली क्षेत्र में लंबित हिमाचल के मुद्दों का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल को मिलने वाली निःशुल्क बिजली के बदले में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की ताकि राज्य को इसका फायदा मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह थम गया है और राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही इसे गति दी जाएगी। जयराम ठाकुर आज सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के चलते सराज विधानसभा क्षेत्र सहित सभी भाजपा विधायकों वाले क्षेत्रों के साथ प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग की अनदेखी हो रही है। इससे पूर्व जयराम ठाकुर ने थाची में आयोजित जोनल अंडर 19 बालिका खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की और विजेता व उपविजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रदेश की सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अब डिजिटल रूप में संरक्षित होगी। राज्य अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के लगभग 17 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण प्रथम चरण में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में कहा कि ये पहल प्रदेश की अमूल्य दस्तावेजी धरोहर के दीर्घकालिक संरक्षण और उसे आमजन व शोधकर्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य अभिलेखागार में वर्ष 1807 से अब तक के 30,000 से अधिक ऐतिहासिक अभिलेख, दुर्लभ पुस्तकें, गजेटियर सेटलमेंट रिपोर्ट्स, पांडुलिपियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग हिमाचल ही नहीं बल्कि देश विदेश के शोधकर्ता, इतिहासकार और शिक्षाविद शोध कार्य के लिए करते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनका लक्ष्य शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को विकास में नंबर वन बनाना है। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला के चलौंठी में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते 3.5 सालों में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ से अधिक के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और पंचायतों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए गए धन का सदुपयोग करने पर भी जोर दिया। शिमला जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में ठियोग में एनडीपीएस के एक मामले में 1,64,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति सीज की है। शिमला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बीती 10 जून को दर्ज एफआईआर के अनुसार रहीघाट में एक आरोपी की दुकान से अफीम बरामद की गई थी। जांच में पाया गया कि आरोपी लंबे समय से ठियोग, कोटखाई, रोहडू और आसपास के क्षेत्रों में अफीम की अवैध तस्करी कर रहा था।
1: ये जो संपत्ति है ये आरोपी के नाम पे है, कुछ संपत्ति उसके परिवार के सदस्यों के भी नाम पे है, पर अर्निंग मेंबर एक ही है परिवार में। इनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर इनकी दुकान को ही सर्च किया गया और वहाँ पे जो है मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। बाकी पुलिस की जो कार्रवाई है वो इंटेलिजेंस बेस्ड और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, तो जिसके खिलाफ कोई सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है वो लोग जरूर रडार पे रहते हैं, पर हर एक व्यक्ति नहीं है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
3: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
4: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
5: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर किया है और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। राजीव बिंदल ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में आज सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक है और सैकड़ों स्कूल महज एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में फीस में बेतहाशा वृद्धि कर शिक्षा को गरीब विद्यार्थियों से और दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना तैयारी के CBSE स्कूल खोलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति भी खराब है और डॉक्टरों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि कैग की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। जगत सिंह नेगी आज रिकांगपियों में जिला योजना व 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को जिला योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि जिन कार्यों के लिए बजट का प्रावधान है उन कार्यों में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने आज धर्मशाला में दिशा बैठक में केंद्रीय योजनाओं, फंडिंग और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों पर संतोष जताया, लेकिन केंद्रीय योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यासों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों विशेषकर सांसद की अनदेखी पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की जानकारी सांसद को भी देने के निर्देश दिए। बैठक में फोरलेन परियोजनाओं और सांसद निधि से जुड़े कार्यों पर भी चर्चा हुई। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन को जल्द ही बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी। नाहन नगर परिषद ने शहर की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को कोटला बड़ोग स्थित काउ सेंचुरी में भेजना शुरू कर दिया है। नाहन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि आज पहले दिन 10 बेसहारा पशुओं को काउ सेंचुरी भेजा गया। उन्होंने कहा कि ये मुहिम भविष्य में भी जारी रहेगी।
6: आवारा पशुओं की संख्या जो नाहन शहर में बहुत अधिक हो गई है और इसमें हमने अभी जो स्टेप उठाया है माननीय विधायक महोदय के आदेशानुसार व नगर परिषद के सभी पार्षदों ने निर्णय लिया कि इन पशुओं को जो है जो जितने भी बेसहारा पशु हैं इनको काउ सेंचुरीज में भेजा जाए, तो जिसके लिए हमने कांडाकुंडी नालागढ़ भी संपर्क किया है और कोटा रोग राजगढ़ में भी संपर्क किया है। तो आज हमने लगभग 9 या 10 पशु के करीब जो है वो कोटा रोग राजगढ़ भेज दिया और ये क्रम जारी रहेगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उठाए प्रदेश हित के मुद्दे। ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में रुके विकास को भाजपा के सत्ता में आते ही दी जाएगी रफ्तार। राज्य अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के लगभग 17 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लगाया शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
7: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, समाचारों के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। और जाते जाते अब आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बस आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। इस गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को भी दीजिए जाने की इजाज़त।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत।

0: गोरिया आकर, गोरिया गोरिया आकर, आ गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना।

0: गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती, इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: चाय मांगी थी, क्या है ये?
5: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
4: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
6: अब क्या देख रहे हो पापा?
4: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
6: किससे?
4: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
6: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
5: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
7: के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: अरे ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

90.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने

0: गोरिया आकर, गोरिया गोरिया आकर, आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो ले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: मम्मी की

0: इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊटपटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
1: अब क्या देख रहे हो पापा?
0: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
1: किससे?
0: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
1: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
2: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
3: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
4: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है, वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस तो लंबी थी ना।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: यार अगर घर वाले नहीं मान रहे तो भाग के शादी कर लो।
1: यार क्या बोल रही है तू? हम शादी पापा की मर्जी से ही करेंगे और अगर हमारा प्यार सच्चा होगा
2: तो महादेव हमें खुद मिलाएंगे।
3: मैंने सुना है एक जगह है यहाँ शिव और पार्वती का विवाह स्वयं विष्णु जी ने करवाया था, त्रियोगी नारायण मंदिर। अगर आप दोनों वहाँ मन्नत मांगोगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

0: बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।
1: ओ मनी चल, माता रानी आ गई।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।